नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि आप कौन सा फोन यूज करते हैं, मतलब कोई भी ब्रांड हो, हट्टा खट्टा तो है ना? जी हाँ, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि ये मोबाइल फोन यूं ही हट्टा खट्टा नहीं हुआ है, इसने बहुत कुछ खाया है। ये हाथों की घड़ियां खा गया, ये लेटर्स लव लेटर्स खा गया, इसने रेडियो को खा लिया, टेप रिकॉर्डर कैसेट्स कैमरे चबा गया, टॉर्च को खा गया, ये मोबाइल किताबें खा गया, इसने सैकड़ों मील की दूरियां पी हैं, इस मोबाइल ने तन्हाइयां पी हैं, पड़ोस की दोस्ती मेल मिलाप सब खा गया, अब समय नहीं लोगों के पास, ये लोगों का वक्त खा गया, ये पैसे खा रहा है, ये रिश्ते खा रहा है, ये लोगों की हेल्थ खा रहा है और उन्हें रोगी बना रहा है। ये मोबाइल यूं ही हट्टा खट्टा नहीं हुआ है, हमने इसे बहुत कुछ खिलाया पिलाया है। तो बॉस क्या कहते हैं, ठीक तो है ना आपका मोबाइल? हाँ, तो ऐसे खिलाते पिलाते रहेंगे क्या, सोचिए। आइए फिलहाल एक अगले ट्रैक के साथ हम आपको आगे लेकर चल रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर. यू नो आज सुबह मैंने अपने लिए कॉफी बनाई और जब उसे कप में निकाला तो वो गिर गई. मुझे लगा कि शायद भाई मैंने मन से नहीं बनाई होगी. मैंने दोबारा कॉफी बनाई, फिर कप में निकाली और वो फिर गिर गई. शायद मेरी कॉफी की रेसिपी गलत है. जब मैंने कई बार इसे गिरते देखा तो यही सोचा. फिर बाद में दिमाग चला कि भाई रेसिपी गलत नहीं है, शायद उस कप की कैपेसिटी नहीं है कि वो उतनी कॉफी को हैंडल कर पाए. ज्यादा कॉफी है और शायद इसलिए वो गिर रही है. ठीक इसी तरह से तो हमारी जिंदगी में भी होता है. हम कुछ लोगों को इतना एक्स्ट्रा प्यार, इतनी एक्स्ट्रा केयर दे देते हैं जितनी संभालने की उनकी कैपेसिटी नहीं होती है, वो उसे हैंडल नहीं कर पाते. और फिर हमें लगता है कि शायद हमारी ओर से कोई कमी रह गई, हमारी रेसिपी में कोई प्रॉब्लम थी. लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो उतनी ही चीज़ों को, उतने ही प्यार, उतने ही एफर्ट्स, उतनी ही केयर को, उतनी ही उनके लिए की गई परवाह को वो हैंडल कर सकते हैं जितनी उनकी कैपेसिटी है. सो कैपेसिटी से ज्यादा मत दीजिए वरना चीजें बाहर गिरेंगी. स्टे ट्यून्ड सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी, आप सुन रहे हैं इट हैपेंस.

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

कई बार हम सारी चीजें तो करते हैं लेकिन अपनी हेल्थ पर फोकस नहीं करते। खासकर लेडीज की आदत है कि वो घर संभालेंगी, बच्चे संभालेंगी, हर चीज का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ख्याल रखेंगी, लेकिन अपनी हेल्थ की जब बारी आती है तो वो एकदम लापरवाह हो जाती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बिना घर नहीं चल सकता है। जो भी लोग ये सोचते हैं ना कि हमारे बिना ये काम नहीं हो सकता, सबसे बड़ी गलतफहमी उनकी है। मैं मानती हूँ कि चीजें मिसमैनेज होती हैं, लेकिन काम नहीं चलेगा ऐसा कुछ नहीं है। जब आप बीमार पड़ जाती हैं तब आपके हस्बैंड, आपके बच्चे थोड़े थोड़े एफर्ट्स डालते होंगे, नहीं डालते तो कम से कम खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, मेड रख लेते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि भूखे सो जाते हैं या फिर उनका काम ना चले, है ना। लेकिन अगर आपकी हेल्थ खराब रहेगी तो आपका काम नहीं चलेगा। इसलिए कह रही हूं अभी भी वक्त है, खुद की हेल्थ पर फोकस कीजिए, खुद की हेल्थ पर ध्यान दीजिए। चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं, फिलहाल एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM।

कई बार हम चीजों को बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, हम चीजों को बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है हम इस पर ध्यान नहीं देते। मैंने जो चीज रियलाइज की है, ये ओवरथिंकिंग की जो प्रॉब्लम है, ये बेसिकली लेडीज के साथ या उन लोगों के साथ ज्यादा होती है जो एक घर में रहते हैं, मतलब एक रूम में, एक घर में, एक एरिया में पर्टिकुलर वो रहती हैं। बाहर की दुनिया से ज्यादा रापता नहीं रहता, थोड़ा बाहर निकलेंगी नहीं, वॉक नहीं करेंगे आप, घूमेंगे नहीं, या वो मेल्स भी जो वर्क फ्रॉम होम पर हो जाते हैं और फिर उन्हें बाहर निकलने का मन नहीं करता। बाहर निकलना, बाहर की दुनिया को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके थ्रू आप अपने आप को फिट रख सकते हैं मेंटली। जब आप एक ही जगह पर रहते हैं तो वही सारी चीजें देख देख कर आपकी ओवरथिंकिंग की आदत पड़ जाती है, आप कुएं के मेंढक जैसे हो जाते हैं जिसे कुछ और नजर ही नहीं आता है। इसलिए प्लीज बाहर निकलिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, वॉक पर जाइए, सुबह टाइम नहीं मिलता शाम को निकल जाइए, बट अपने घर से निकल के बाहर की दुनिया को देखना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है जी, चलिए फिलहाल एक और ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ, और यूं सुनते रहिए ठापन। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 107.01।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सरसों की माला पे सिमरूं मैं।
3: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.

सो वेलकम बैक। इससे एक और गाने के इस पार सताक्षी है आपके साथ, आप सुन रहे हैं मेरे साथ इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। यू नो, कई बार ना हम कुछ रिश्तों में, कुछ ऑफिस वर्क में, कुछ प्रोफेशन में, कुछ ग्रुप्स में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए अपने आप को बहुत तोड़ मरोड़ देते हैं। हमारी नीड्स क्या हैं, हमारी इच्छाएं क्या हैं, हमारे प्लान्स क्या हैं, ये सब चीजें हम साइड कर देते हैं और हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं उस इंसान के साथ, उस ग्रुप के साथ, उस फैमिली के साथ, उस ऑफिस में। कई बार आप एडजस्ट करते हैं, लेकिन अपने आप को इतना तोड़ मरोड़ के अगर आप एडजस्ट करते हैं तो कब तक कर पाएंगे? अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को, अपने इच्छाओं को, अपनी विशेष को अगर आप ताक पर रखकर, अपने आप को पूरी तरह से झुका कर अगर आप एक इंसान के साथ, एक ग्रुप के साथ, एक रिश्ते में आप एडजस्ट हो रहे हैं या आपको प्रमोशन मिल रहा है, तो कब तक आप हो जाएंगे एडजस्ट? बट आपका दम घुटने लगेगा और ऐसा ही बहुत सारे लोगों के साथ होता है। सो प्लीज ख्याल रखिए खुद का, खुद के सपनों का, खुद की ड्रीम्स का। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी पर।

सो फ्रेंड्स, ये था आज का इट हैपेंस का एक और सफर जिसमें आप मेरे साथ थे इस मॉर्निंग, और हम और आप मिलकर जिंदगी के कुछ बेहतरीन सपनों को डिस्कस कर रहे थे। सो बस जिंदगी के इन्हीं सपनों के साथ हमारा तालमेल जारी रहेगा कल भी इट हैपेंस में आपके अपने ब्रेकफास्ट शो में। लेकिन अब ये वक्त है आज के सफर से इजाजत लेने का, विदा लेने का। तो चलिए मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिए, अपने सपनों की ओर बढ़िए और अपनी जिंदगी को जीते रहिए। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट।

0: मचेगा मचेगा।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ओर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन

0: डॉलर दा निवेश करी है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid-ul-Azha, May 27th.

कम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 एम ते जी आर चे संदेश शौलक दिनाल तुसी बने हुए हो। देखो गल एदा हैगी है कि पिछले कुछ साल ऑडियंस के विचकार साइकोलॉजिकल फिल्मों का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया है गल सही कि नहीं तुसी जरूर दसो तुहानू साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज चंगीआं लगदीआं ने क्रेज वधिया है या नहीं वधिया मैनू जरूर दसो मैसेज करके। बाकी दृश्यम या अंधाधुन की जो गल करिए इस तरह फिल्मां ने तो इस क्रेज नू होर ज्यादा वधाता है। ते जेकर तुसी भी अजिहियां साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मां दे शौकीन हैगे हो तो मैं थोनू कुछ अजिहियां बॉलीवुड मूवीज बारे दसूंगी ना जिन्हां नू तुसी जदों देखोगे ना तो तुसी कहोगे कि वाह ये तो बहुत ज्यादा वधिया ने, क्योंकि साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मां ना सिर्फ तुहानू एंटरटेन करनगियां वालियां बल्कि तुहाडे दिमाग नू भी शांत नहीं रहण देणगियां। इस विच कद ट्विस्ट ते सस्पेंस आ जावे ये थानू सोचण ते मजबूर हो जाऊंगी तुसी ये सब कुछ। तां दस दिया इन्हां बारे मैं थानू एक एक करके पहला सुनो एक गीत।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: सरसों की माला पे सिमरूं मैं।
5: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.

जी आनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिराल से बने हुए। इस लिस्ट दे विच अगला नाम केड़ा है गया, अगला नाम अगला ता नहीं मतलब पहला ही नाम क्योंकि हले आप शुरुआत ही करने लग गया। तो पहला नाम है गया जी वश। वश वशविनी वश टू यानी कि वश लैवल टू आता है। यह गुजराती भाषा की सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म हैगी है जिसका निर्देशन कृष्णदेव यागिन ने किया है। गुजराती के नाल नाल हिंदी विच रिलीज की गई है। ये 2023 दिना हिट फिल्म वश का सीक्वल है। वश टू कहानी 12 साल बाद शुरू हुंदी है जिथे परिवार नू फिर तो ब्लैक मैजिक ते अलौकिक शक्तियां दा सामना करना पैंदा हैगा है। ते वश टू विच जानकी बोदीवाला जो कि नैशनल अवार्ड जीत चुकी है, हितू कनोटिया ते मोनल गज्जर वर्गे कलाकार शामिल ने। फिल्म टेंशन दे नाल भरे सीन्स अते बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी दे लई खूब पॉपुलर हुई है। ऑडियंस ने अंगेजिंग अते इस बहुत ज्यादा सराया है इस ऑडियंस ने। इस दी एमडीबी रेटिंग है कि है जेडी ओ 7.9 आई है कि है।

0: आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो प्रसवानी वंसा नुवाने एम ते जी आज संदेश अलग दिन से बने हुए हूं। जी अगली फिल्म की मैं गल कर लगी हैगी वह भी बहुत ज्यादा खास हैगी है अपार शक्ति दी। तो सोच ही पै जाओगे कि अपार शक्ति की मैं शायद स्त्री मूवी की गल करूंगी, पर स्त्री मूवी की गल बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि इस अपार शक्ति राजकुमार राव तो बिल्कुल भी नहीं है, आर माधवन ते नाल है ख्याति खंडेलवाल। थ्रिलर ड्रामा हैगी है फिल्म ते नाम है जी धोखा राउंड द कॉर्नर। 2022 विच रिलीज हुई सी। कुकू गुलाटी ने इस नूं डायरेक्ट किया। ए थ्रिलर ड्रामा फिल्म एक शहरी कपल दी लाइफ ते आधारित है। कहानी विच साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नाल जूझ रही पत्नी नूं शक हुंदा है कि पति किसी अत्तवादी गतिविधियां विच शामिल है, पर ट्विस्ट दे नाल नाल सच्चाई सामने आउंदी है कि दोगा राउंड द कॉर्नर विच हर किरदार दे ग्रे शेड्स दिखते हैगे ने। इह धोखे विश्वासघात ते रिलेशनशिप ते फोकस करती है। इस दी आईएमडीबी रेटिंग हैगी जिहड़ी 6.2 हैगी है ते रिलीज दे दौरान इस नूं सस्पेंस नाल भरी बेहतरीन फिल्म दस्या गया सी।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.1 ते जी आर चे संदेश अलग दिन से बने हुए। राघव चड्ढा काफी ज्यादा ट्रेंड करते रहते हैं ना सोशल मीडिया से, तो गल फिर परिणीति की करनी तो बनती है ना। गल परिणीति चोपड़ा की कर लें, अगली फिल्म उन्होंने है, पर कल्ली आदिति की नहीं हैगी। इस आदिति परिणीति चोपड़ा के नाल आदिति राव हैदरी ते कृति कुल्हारी भी है। तो फिल्म का नाम है जी द गर्ल ऑन द ट्रेन। पाला हॉकिंग्स की प्रसिद्ध किताब से आधारित हैगी है। सस्पेंस थ्रिलर की कहानी एक हॉल विच ही डिवोर्सी अते अल्कोहलिक महिला मीरा की कहानी है, जो ट्रेन विच रोज गुजरते हुए एक परफेक्ट लगन वाले कपल नूं देखती है ते उन्हां दी जिंदगी विच फैंटसी मुंडी है कि जल्दी वो एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन विच फस जाती है। निर्देशक रिभु दास गुप्ता है ने इसते। फिल्म विच सस्पेंस अते ट्विस्ट है ने, पर क्रिटिकल मतलब रिस्पॉन्स मिक्स है इसका। तो इसकी आईएमडीबी रेटिंग 4 रही है, बट वन टाइम वॉच है कि है जरूर।
1: एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां, क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं ये चीजां सीखियां तो तुहानूं दसणियां मेरा फर्ज है।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and tiers apply.
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यार मैं बहुत worried हूँ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offence vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101 ते चार चे संदेश अलग दिन से बने हुए। अगला जेड़ा नाम हैगा मूवी का, वह तो मैं पक्की गारंटी हैगी है कि वह थानू जरूर ही पसंद आई होगी। तुसी सब ने उस नू बहुत ज्यादा सलाया होगा क्योंकि इसकी गवाह उसकी रेटिंग ते उसके रिस्पोंस ते उसके रिव्यूज है कि नहीं। फिल्म तापसी पन्नू की हैगी है, नाल हर्षवर्धन राणे ते नाल विक्रांत मैसी भी हैगी। रोमांस थ्रिलर फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री ते बेस्ड है। हुण तुसी सोचो कि की नाम है, यही तो तुहाडे लई काम है। कहानी विच एक महिला ते अपने पति की हत्या का आरोप लगता है, पर फ्लैशबैक ट्विस्ट के नाल प्यार जुनून ते धोखे की कहानी होर गहरी होकर उभरती हैगी। निर्देशक विनील मैथ्यू हैगे ने, फिल्म सस्पेंस नूं सरकास्टिक ह्यूमर दे नाल ब्लेंड करती हैगी। सैम डीबी रेटिंग हैगी जिहड़ी 6.9 है। हुण तक तुहानूं समझ आ गई होनी है कि मैं किस फिल्म की गल कर रही हूं। बिल्कुल सही जी, मैं कर रही हैगी हसीन दिलरुबा दी।

0: घर मुहैया करवा रहे हैं। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हैं। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: तेरे वर्गा आशिक वेखिया न तेरे वर्गी आशिकी।
5: ARY Films and Salman Iqbal present Love the Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love the Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.
0: Tuhade ilake vich maujood han. Je tuhanu lagda hai ki tuhade ghar ja jayadad vich fire ants han, ta is di suchna dio. Assi tuhanu fire ants de ilaaj layi muft kit bhejange. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਡਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਡਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ।

हां जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 107.1 AM ते जी आर चे संदेश चौलक दे नाल तुसी बने होयो। देखो अगला जेड़ा मैं नाम लैण वाली है फिल्म दा वो बहुत ज्यादा वधिया हैगी है आलिया भट्ट दी। आलिया भट्ट दी फिल्मां दी जदों भी गल आउंदी हैगी ना तां असीं हमेशा कहिंदे आ कि बहुत ही वधिया हुंदियां ने क्योंकि कमाल दी एक्ट्रेस है आलिया भट्ट। ते इह फिल्म भी आलिया भट्ट दी बा कमाल हैगी है। यह फिल्म है तो इन्होंने एक्ट्रेस नाल होर भी ज्यादा कमाल दी है वो है शेफाली शाह। शेफाली शाह नो डाउट बहुत ज्यादा शानदार एक्टर है। फिल्म का नाम हैगा है डार्लिंग्स। जी हाँ डार्लिंग्स बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल फिल्म रही हैगी बहुत ज्यादा सोहनी भी है कहानी बहुत ज्यादा वधिया हैगी है एंड तो इसका बहुत ज्यादा वधिया है। तो इस नाल नजर आउंदे हैगे ने इन्हां दे विजय वर्मा। विजय वर्मा की एक्टिंग का तो हर किसी नूं पता ही है ना किवें विजय वर्मा आलिया भट्ट दे हसबैंड बनाए ने ते किरदार दे विच हैगे ने ते उह किस तरह दे नाल आलिया भट्ट नूं टॉर्चर करदे ने ते मौत दी कगार ते पहुंचांदे ने। इह सब कुछ तो देखना सारा कुछ मैं नहीं दसदी तुसीं देखियो ते दस्सियो तुहानूं किदां दी लगी डार्लिंग्स।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवें घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: The Total Focus Group Australian International Masters 2026 hosted by Queensland Fiji Football Association QFFA from 1st July till 5th July 2026 at the iconic Olympic FC Stadium in Yeronga, Brisbane. With 32 teams already confirmed participating across Fiji, Australia, New Zealand, Canada and United States. Festival atmosphere for the whole family, live entertainment, kids play zone and food stalls. For more information, contact President Jitendra Prasad, Chairman Imroz Mohammed and Secretary Aman Kumar, connecting the community. And a big thank you to our major sponsor, Total Focus Group.

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: खूबसूरत ना।
1: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: LKR Event proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
4: ਭੈਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
5: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
4: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नु तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
6: नंबर कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। Q11700, द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट, फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोविनेंस, ओन्ड आउटराइट, ट्रांसफर रेडी फॉर द बायर हु अंडरस्टैंड्स that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: This is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

हूँ आपका। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आज निव्या के साथ, और आपकी आज निव्या हाजिर हो गई है। तो मैं क्या कह रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए। मतलब प्रोग्राम जब आप सुनते हैं, प्रोग्राम में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोग्राम में जब आप अपनी फरमाइशें करते हैं ना, तो बहुत मजा आता है। तो जल्दी से आ जाइए क्योंकि इवनिंग वाइब शुरू हो गया है। और आपको तो पता ही है, जब शुरू होता है इवनिंग वाइब तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछती हूँ कि कैसा फील कर रहे हैं आप। जी हाँ, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। ट्यूजडे का दिन और दिन है ऑफकोर्स काम का, सो ऑफकोर्स काम का दिन है और भर भर के काम करने का दिन है। सिर्फ काम कि भर भर के काम करने का दिन है। आई होप ये दिन आपका अच्छा जा रहा हो और कहीं आपको थोड़ी सी थकावट या स्ट्रेस फील हो रहा हो, तो यहाँ पर हम आपको उससे मुक्ति दिलाने आ गए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए बढ़िया से गाने प्ले करेंगे, मस्त से, मजेदार से, जबरदस्त से। और साथ में सबसे पहले आपको मेंटली फिजिकली हेल्दी कैसे रहना है और किसी भी चीज की शुरुआत के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको हम बताते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। वेल, दिस इज अ रिचुअल जो कि बहुत ही यू नो होली रिचुअल है हमारे लिए, क्योंकि ये जब हम करते हैं तो हम सुनिश्चित कर लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत ही बढ़िया जाने वाला है, एकदम काम दिमाग से, मजेदार बातों के साथ। कोई भी पीछे की चीज हमारे दिमाग में नहीं घूम रही होगी। अगर आप भी किसी चीज को करना चाहते हैं, अच्छे से प्रोडक्टिव तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट आइडिया। मतलब डीप ब्रेथ आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए कैसा आपका कमाल से आपका काम होता है। तो आइए सबसे पहले क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ अब बिना देर किए हुए चलते हैं सीधा एक बढ़िया सा, प्यारा सा, मधुर सा गाना आपको सुनाते हैं। और ये मधुर सा गाना आपको सच में बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये है सोनू निगम की आवाज़ में। अब सोनू निगम की आवाज़ में जब भी हम कुछ सुनते हैं तो हमको तो बहुत अच्छा लगता है और आपको भी लगता है। सो आइए बिना देर किए करते हैं शुरुआत और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

दोस्तों, और इससे पहले हम मौसम की ओर जाएं, सबसे पहले आपको तो पता दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि क्या हुआ था आर्जेनिवा के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो हुआ है वो बहुत ही फनी है, और कहीं ना कहीं मधु भी गॉडेस जो है वो मुझसे मतलब मधुमक्खी यानी कि हनी बी गॉडेस जो थी वो मुझसे नाराज हो गई थी, और इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना निव्या शर्मा को थोड़ा सा सबक सिखाया जाए। अब सबक सिखाने की कोशिश वो कर रही थी या प्यार करने की कोशिश कर रही थी, आई डोंट नो, लेकिन अपेरेंटली मुझे मधुमक्खियों ने काट लिया था। आप लोग बोलोगे कि वाह निव्या वाह, और वो भी एक ने नहीं, दो ने नहीं, बल्कि तीन तीन ने। आप लोग बोलोगे वाह निव्या वाह, अब तो हम कह सकते हैं कि वो तुमसे बदला नहीं ले रही थी, तुमको कोई भी परेशान करने की कोशिश नहीं कर रही थी, वो प्यार कर रही थी। क्योंकि तीन मधुमक्खियां, एक काटती तो लगता कि हाँ काट रही है, दूसरी काटती तो भी लगता कि हाँ परेशान करने के लिए काट रही है, लेकिन तीन तीन ने काटा वो तो प्यार ही हो सकता है, मोहब्बत ही हो सकती है। वेल वेल वेल, मुझे मोहब्बत मधुमक्खियों से नहीं चाहिए, आई वुड से। जी हाँ, सो आपकी आर्जेनिवा को मधुमक्खियों ने काट लिया था, मतलब मैं लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंड इट वॉज वेरी पेनफुल। ऑफकोर्स तीन तीन मधुमक्खियां काटेंगी तो ऑफकोर्स मैंने बहुत सारे आयुर्वेदिक उपाय उसके लिए किए, जो मेरे घर वालों ने बताया कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, पता नहीं क्या क्या कर दिया चाहिए, लेकिन आई थिंक जो मैंने एक नई चीज सीखी है और वो मेरे लिए काम की, आई डोंट नो वो किसी और के लिए काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन वो मेरे लिए काम की क्योंकि मुझे किसी ने कहा वो करने के लिए, एंड वो थी नींबू। सो लेमन को मैंने काटा और फिर उसको जो है वो रब किया जहां पर मुझे मधुमक्खी ने काटा था, एंड यू नो व्हाट, मुझे स्वेलिंग जो है वो जितनी होनी थी उससे काफी कम हुई, मतलब ऑफ कोर्स वो काफी थी बट जितनी कंपैरेटिवली होनी थी उससे काफी कम हुई। और ये नुस्खा मुझे मेरे घर वालों से पता चला और फैमिली फ्रेंड से भी कुछ नुस्खे पता चले, एवरीवन वाज लाइक, सबके सब डॉक्टर बन गए थे, सबके सब वैद्य बन गए थे, आयुर्वेद शुरू हो गया था, ये शुरू हो गया था, वो शुरू हो गया था, एवरीवन वाज लाइक यू नो व्हाट निव्या शर्मा तुम ये करो, यू नो व्हाट निव्या तुम ये करो, एंड आई वाज लाइक ठीक है पर मैं इससे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा दो या तीन चीजें ही कर पाऊंगी, इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज इट वॉज वेरी पेन। स्टार्टिंग में तो वो इतना खतरनाक तरीके से, उसमें अजीब अजीब सी फीलिंग्स मुझे आ रही थी, उसके बाद जो था वो लेटर फेस था, मतलब जब दर्द हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उसके बाद जो आता है वो इचिंग वाला फेस हो जाता है, एंड इचिंग वाला फेस जो था ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक था। सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको कभी मधुमक्खी ने काटा है, और अगर आपको कभी मधुमक्खी काटती है या काटा है तो आपने कौन सा घरेलू नुस्खा उसके लिए आजमाया था जिससे आपको काफी अच्छा फील हुआ था? ऑफकोर्स मैंने दवाई भी खाई, दैट इज वन केस, मुझे इंजेक्शन भी लगा वो भी एक अलग बात थी, लेकिन जो फर्स्ट एड थी वो सारी की सारी घरेलू नुस्खों के साथ मेरी हुई, घर वालों ने की, और ऑफकोर्स दूर दूर से लोग मुझे सलाह देने आ रहे थे, सो ऑफकोर्स मैंने वो सब किया, बट आई थिंक लेमन वर्क्ड फॉर मी, बट ऑफकोर्स ये मेरे लिए काम किया, किसी और के लिए काम करे या नहीं करे, एंड पीपल कैन बी एलर्जिक टू लेमन ऑल्सो, सो आई डोंट नो, बट द थिंग इज कि हाँ मधुमक्खी ने काटा, फिर मैंने उसके लिए नुस्खे किए, उसके बाद बहुत कुछ हुआ, या मतलब अभी भी इजिंग वाला फेज जो है वो चल रहा है, बट आई वॉज लाइक यू नो वॉट आई कांट, मैं अपने लिसनर से दूर नहीं रह सकती, मुझे तो प्रोग्राम करना है जाके, मुझे मेरे लिसनर से मिलना है, मधुमक्खियां आए या जाए मुझे मेरे लिसनर से मिलना है, उससे कोई नहीं रोक सकता मुझे मिलने से। सो या आई एम हियर, एंड आइए एक और बढ़िया सा गाना मैं अब आपको सुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, और ये है खूबसूरत सा गाना दीवाना कर रहा है। आप लोग बोलोगे कि वाह निव्या ये तो बड़ा ही रोमांटिक है, अब ऑफ कोर्स यहाँ पे मधुमक्खियां मेरे साथ रोमांस करके चली गई हैं तो यहाँ पर ये गाना तो बनना चाहिए यार, मतलब मधुमक्खियों को ऑनर करने के लिए तो बनता है ये।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote, code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
11: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया.
12: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें.
11: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
12: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से. और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं.
11: मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
12: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो.
13: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस. और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर. याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर.
14: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है.
15: सरसों की माला पे सिमरूं मैं.
16: LKR Event proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
17: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ. तो दोस्तों इसी के साथ अब जरा सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम के बारे में, क्योंकि बाकी चीजों के बारे में तो बात चलती रहेगी, फिर चाहे किसी को कुछ काटे या किसी को कुछ प्यार करे. जी हाँ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की, यानी कि टेम्परेचर की. मैक्सिमम टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और अगर बात की जाए अभी की तो 20.1 डिग्री सेल्सियस के करीब है. फील भी आपको 20.1 डिग्री सेल्सियस के करीब हो रहा है. वहीं अगर बात की जाए रात के टेम्परेचर की तो 14 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप तापमान में देख पाएंगे. जी हाँ, और इसी के साथ एयर क्वालिटी है एकदम मजेदार, और जैसे मैंने कहा था कि 50% चांसेस हैं बारिश के, जो कि बूंदाबांदी वाली सिचुएशन कहीं कहीं हो सकती है, बट मोस्टली नॉर्थ ब्रिस्बेन में. बाकी जगह थोड़ी बहुत बारिश या मौसम मतलब क्लियर भी रह सकता है. मतलब क्लियर से मेरा मतलब है बादलों वाला क्लियर, बारिश नहीं हो सकती बट एग्जैक्टली क्लियर क्लियर नहीं रहने वाला है. सो या इसी के साथ एयर क्वालिटी है एकदम फेयर, और अगर बात की जाए कल की वेडनेसडे की तो कल आपको भर भर के सूरज मिलने वाला है विद 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. वेडनेसडे और थर्सडे आपको पूरी तरह से सूरज की किरणें जो है वो मिलने वाली है, और आपको बहुत ही मजा आने वाला है. इनफैक्ट थर्सडे को 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तो उसका आनंद उठाइएगा. और ये दो दिन आपको मजे से धूप सेकनी है. अभी से अपने पोमेलो, ग्रेप फ्रूट, संतरे, यू नो मैंड्रीन्स, टैंजरीन्स, सब कुछ जो है वो ऐप स्टॉक कर लीजिए, क्योंकि धूप में बैठ के ये विटामिन सी और सिट्रसी फ्रूट्स खाने में जो मजा है ना, और किसी भी चीज में नहीं है, आई एम टेलिंग यू। सो या इसी के साथ ये सब कंज्यूम कीजिए। और जैसे मैंने कहा कि बारिश होने के चांसेस मुझे नहीं दिख रहे हैं, मतलब एकदम क्लियर रहने वाला है मौसम, तो आज बस ये जैसा मौसम था वो आज ही था। उसके बाद आपको दो दिन भर भर के सूरज मिलने वाला है, उसके बाद फिर से आपको जो है वो थोड़ी बहुत बारिश की आप और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फ्राइडे और सैटरडे को भी मैं देख पा रही हूँ, फ्राइडे को थोड़े बहुत बादल होंगे और सैटरडे, मतलब ये पूरा का पूरा हफ्ता आपको बहुत मजा आने वाला है मौसम के फ्रंट पे। और ये खूबसूरत धूप जो है वो सर्दियों में हमारे लिए कितनी जरूरी है, इसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई मिल गया का जादू हम बन जाते हैं, हमें भी जादू की तरह धूप से ही पूरी तरह से एनर्जी आती है, वरना हमें ऐसा फील होता है कहाँ क्या हो रहा है इस दुनिया में, क्या ही चल रहा है इस दुनिया में। सो इसी के साथ एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

कुछ गाने ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारे होते हैं, मतलब उनकी जितनी तारीफ की जाए और इसको जिस भी वक्त सुना जाए वो अच्छे लगेंगे। ये गाना जो कि वीर ज़ारा का है, जो कि खुद में ही बहुत ही खूबसूरत मूवी है। व्हेन इट कम्स टू लव स्टोरीज ना, वीर ज़ारा जो है वो बॉलीवुड की उन कहानियों में से एक है जो सबसे ऊपर आती है, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट performances by the stars, of course one of the finest story by the writer, and यहाँ पर मैं कहूँगी कि ये movie अगर आपने नहीं देखी है ना तो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको literally आप इतना ज़्यादा emotional हो जाओगे ना, you will just fall in love with the story and the characters, I'm damn sure। जी हाँ, इसी के साथ चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि कैसे आप हमारे इस program का हिस्सा बन सकते हो, और दूसरे शब्द में तो अपनी फरमाइश पसंदीदा गानों को फरमाइश कर सकते हो हमारे इस प्रोग्राम तो आपको करना क्या है, आपको अपना फोन उठाना है, नंबर डायल करना है, नंबर है +9182887170। आई रिपीट, +9182887170। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश, और जब तक आप भेज रहे हैं हमारी तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना, अरे नहीं नहीं हमारी तरफ से नहीं बल्कि फरमाइशी गीत है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर अमला जी की तरफ से। और जैसे मैंने कहा कि फरमाइशी गीत आप सुन सकते हैं, आप फरमाइश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने फेवरेट गाने, और यहाँ पर सिलसिला भी शुरू हो गया है। ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना फरमाइश किया गया है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर अमला जी की तरफ से। गाने का नाम है मैंने तो लाख जतन कर डाला, और इससे आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत है, और थैंक यू सो मच अमला जी हमेशा की तरह गजब की खूबसूरत फरमाइशें करने के लिए। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही आपका गाना, और मेरे बाकी के लिसनर्स आप भी आ जाइए अपनी फरमाइशों के साथ कि अभी नहीं।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
5: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
4: ऐसा क्या खास है वहाँ?
5: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
4: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
5: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
6: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
7: यार राहुल तेरे केस का क्या हुआ?
8: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
7: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
8: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
7: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
9: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार जे निविया के साथ। दोस्तों अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि लेट्स जस्ट मूव ऑन टू ऑफ कोर्स दुबई, लेट्स जस्ट मूव टू दुबई, या दैट्स व्हाट यू आर गोना से। आप लोग ऐसा बोलोगे जरूर, क्यों? क्योंकि दुबई ने 4 week वर्क जो है अनाउंस कर दिया है। जी हाँ, और ये प्रोग्राम है जो उनका है जिसका नाम है आर फ्लेक्सिबल समर। जी हाँ, तो समर्स में उन्होंने एक नया प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। अपेरेंटली ये एकदम नया नहीं है, इससे पहले भी 2 साल तक ये प्रोग्राम जो है वो चलता रहा है, जहाँ पर दुबई ने अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 4 दिन का, मतलब उनको सिर्फ 4 दिन काम करने आना पड़ेगा और बहुत ही मजे से वो अपने घर पे रह सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं और व्हाटएवर दे वांट टू डू वो कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा तुम सही कह रही थी कि हमें भी मन कर रहा है कि हम थोड़ा दुबई ही शिफ्ट हो जाए, लेकिन यहाँ पर एक और चीज है। सो अगर दुबई की गवर्नमेंट ने कह दिया है, उनके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में, जो दुबई की गवर्नमेंट का HR डिपार्टमेंट है, जी हाँ दुबई की गवर्नमेंट के पास भी HR डिपार्टमेंट है अपेरेंटली, जी हाँ, सो उन्होंने कहा है कि ये जो प्रोग्राम है इसके तहत 2 स्कीम्स जो है वो लॉन्च की गई है। पहला कि आप चूज कर सकते हो कि आपको 4 दिन काम करना है ऑफिस आकर, या फिर आपको 5 दिन काम करना है लेकिन आपको कम घंटे तक काम करना पड़ेगा हर दिन. सो ऑफकोर्स ये उनके पास चॉइस है. और क्या हमारे पास ऐसी चॉइस है? नो, हमारे पास ऐसी कोई भी चॉइस नहीं है. सो ऑफकोर्स हमें 5 के 5 दिन 8 के 8 घंटे जो है वो काम करना है, और उसमें कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं हो सकते हैं. सो दुबई इज वेरी गुड, लेकिन अभी जो जितना केओस चल रहा है उसके हिसाब से आप बोलोगे कि नहीं नहीं वे ठीक है, हम 5 दिन काम कर लेंगे. पर दुबई पे जिस हिसाब से ईरान कभी भी मिसाइल गिरा देता है, हम ऑस्ट्रेलिया में ही ठीक है, हम यही ठीक है. मतलब वहां वाला हाल अच्छा तो साउंड कर रहा है, लेकिन उतना अच्छा है नहीं, क्योंकि रियलिटी जो है वो ईरान ने बदल दी है. दुबई जो कि लिटरली हॉटेस्ट हब था, इंडस्ट्रियल हब, उसको उसने लिटरली गड़बड़ करके रख दिया है, एंड ऑल बिकॉज ऑफ द ईरान अमेरिका वॉर. बट या दुबई अभी भी सोच रहा है अपनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बारे में, अपनी पब्लिक एम्प्लॉयज के बारे में, और उन्होंने कह दिया है कि या आप चूज कर सकते हो, 4 दिन ऑफिस आके काम करना चाहते हो या 5 दिन काम करना चाहते हो ऑफिस आके, लेकिन कम घंटे तक आप काम कर सकते हो. सो या आई मीन ऐसी चॉइस अगर हम सबको मिले तो कितना मजेदार काम हो जाएगा, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि हमको ना थोड़ा गवर्नमेंट में किसी के कान में ये बात डाल देनी चाहिए. सो I mean, they might think about it, right? I mean, we don't know. I mean, they can, right? यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ एक चीज मैंने पिछले कल देखी और सुनी और मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैं सोशल मीडिया चला रही थी और वहीं पर एक बंदा आता है, एक रील मेरे सामने आती है और एक बंदा बोलता है कि यू नो व्हाट, एक चीज मुझे बहुत ज्यादा अमेज करती है कि हमने कभी भी एलियंस को देखा नहीं है, बट हमें लगता है कि वो हमसे अगली है, मतलब वो हमसे सुंदर नहीं दिखते, वो हमारे जैसे नहीं दिखते, हमसे अच्छे नहीं दिखते. वी आर द सेल्फ प्रोक्लेम्ड हॉटीज ऑफ द गैलेक्सी. जी हाँ, and I was like, yeah, that's true, क्योंकि किसी ने भी ये तो नहीं बोला आज दिन तक, मतलब उन्होंने UFOs को देखा है, ऐसा कहा जाता है, ऐसी sightings भी हुई हैं, लेकिन किसी ने भी exactly aliens को नहीं देखा. So, हम कैसे ये मान सकते हैं कि aliens जो हैं वो वैसे दिखते हैं जैसे कि उनको दिखाने की कोशिश की गई है आज दिन तक मूवीज में एंड यू नो बुक्स में. सो हमें कैसे पता कि वो वैसे ही है? क्या पता वो हमसे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, क्या पता वो हमारे जैसे ही दिखते हो, क्या पता हम उनके सामने अगली लगे. जी हाँ, सो हम कैसे अपने आप को ये कह सकते हैं? हम जब भी एलियंस की बात करते हैं हम अजीबो गरीब सा एक रेप्टाइल दिखा देते हैं, बट क्या पता, आई मीन हु नोज, कि वो वैसे दिखते ही ना हो, राइट? मैं उसके बाद सोच में पड़ गई कि या वी आर सेल्फ प्रोक्लेम्ड हॉटीज ऑफ द गैलेक्सी, मतलब हमको लगता है कि हम अच्छे दिखते हैं लेकिन एलियंस वो तो ऐसे ही दिखते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा. यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीडा। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
4: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर

0: me? May I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताने वाली हूँ जिसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि अर्जेंटीना कितनी जबरदस्त कंट्री है। जी आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, जब से आई हो कभी दुबई की तारीफ करती हो, कभी अर्जेंटीना की तारीफ करती हो, मतलब तुमको अपनी कंट्री ऑस्ट्रेलिया नहीं पसंद आ रही क्या? अरे ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ही मजेदार है, थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी ठंड और मजेदार सा मौसम। आप लोग बोलोगे कि थोड़ी सी ठंड तो नहीं है, वेलकम कंपैरेटिवली जो बाकी जगह हो रहा है बहुत सही है। यूरोप में गर्मी से पिघल रहे हैं लोग, और सर्दी जो है वो कितनी खतरनाक पड़ती है उसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मतलब यूरोप वाले तो रेडी ही नहीं थे ऐसी गर्मी के लिए। चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको बता दूं कि अर्जेंटीना ने क्या स्पेशल किया है। सो अर्जेंटीना ने यूएस को कहा है, उन्होंने यूएस अथॉरिटीज को कहा कि आप उन 13,000 फादर्स का वीजा ब्लॉक कर दो, जो कि लिटरली मतलब वीजा ब्लॉक अगर आप नहीं भी कर सकते तो आप उनकी स्टेडियम में जो है एंट्री कैंसिल कर दो, ब्लॉक कर दो, जो फादर्स अपने बच्चों को चाइल्ड सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, जो कि कोर्ट ने उनको ऑर्डर किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा जरा फिर से समझाना क्या कहने की कोशिश कर रही हो। वेल अर्जेंटीना जो है वो हमेशा से ऐसी कंट्री रही है जहां पर अगर कोई कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानता है, मतलब खासकर चाइल्ड सपोर्ट के मामले में, तो वो स्टेडियम्स या ऐसी अच्छी अच्छी जगहों पर उन लोगों की एंट्री जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। सो ऐसे में फीफा वर्ल्ड कप जो है वो अर्जेंटीना में तो नहीं हो रहा था, वो हो रहा है ऑफकोर्स अमेरिका में, मेक्सिको में एंड कैनेडा में। सो ऐसे में वो 13,000 लोग, 13,000 लोग खासकर एग्जैक्टली मैं बात कहूं तो फादर्स, जो कि लिटरली उनको कोर्ट ने ऑर्डर करा हुआ है चाइल्ड सपोर्ट देने के लिए अपने बच्चों को, लेकिन वो चाइल्ड सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहां पर फीफा देखने के लिए उनके पास पूरे पैसे हैं, उन्होंने अपने लिए टिकट्स बुक किए हैं और वो लिटरली यूएस गए हैं और वो उस फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस को देखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो अर्जेंटीना ने भी देख लिया कि ओके ऐसा कर रहे हो, मतलब चाइल्ड सपोर्ट तुमसे दिया नहीं जा रहा और तुमको जाके फीफा देखना है, तुमको हम बताते हैं। और वही उन्होंने किया, उन्होंने यूएस को कह दिया है कि ऐसा करो तुम इनके टिकट्स जो है वो ब्लॉक कर दो, मतलब इनके स्टेडियम में एंट्री ब्लॉक कर दो, ये घुस ही ना पाए, ये फीफा देख ही ना पाए। मतलब चाइल्ड सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है लेकिन यहां पे फीफा देखा जा रहा है, लेकिन फीफा भी तुमको हम देखने नहीं देंगे, घर आओ अपने बच्चों को चाइल्ड सपोर्ट पे करो और फिर जाओ कहीं भी कुछ भी देखने के लिए। लेकिन कौन सी कंट्री करती है ऐसा? ओनली अर्जेंटीना। जी हाँ, मैंने ऐसी किसी कंट्री के बारे में नहीं सुना जो ऐसा स्टैंड लेती है, मतलब अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और बुरे लोगों को सबक सिखाने के लिए। लिटरली जो फादर्स है जिनको चाइल्ड सपोर्ट पे करना चाहिए उनको पे करना चाहिए। आप पैसे नहीं है तो समझ आ रहे हैं, लेकिन आपके पास फीफा देखने के लिए पैसे हैं, चाइल्ड सपोर्ट पे करने के लिए पैसे नहीं है। ओहो, लेकिन अर्जेंटीना से हमें और सभी कंट्रीज को कुछ तो सीखना चाहिए इस मामले में, राइट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा। इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, अब सीधा चलते हैं खबरों की दुनिया की तरफ। जी हाँ, आपने सही सुना, खबरों की तरफ रुख करने का वक्त हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विवाद की, जहां पर पाकिस्तान ने हमले किए हैं अफगानिस्तान पर। क्या है माजरा, आइए जरा आपको बताते हैं, क्योंकि अच्छी खबर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के अफगानिस्तान मिशन ने कहा है कि पाकिस्तान ने रविवार को सीमा से लगे अफगान प्रांतों में हवाई हमले किए और सैनिक भेजकर जमीनी अभियान चलाया। इसमें कम से कम 28 आम नागरिकों की मौत हुई है। यूएनएमए के मुताबिक इन हमलों में 49 लोग घायल हुए। मृतकों और घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा कि हमले में आम नागरिकों के घरों को निशाना बनाया गया और इसे कायरतापूर्ण कार्रवाई और अत्याचार करार दिया। वहीं पाकिस्तान ने कहा कि उसने अफगानिस्तान के पक्तिका और कुनार प्रांतों में चरमपंथियों के ठिकानों को निशाना बनाया। दोनों पड़ोसी देशों ने पिछले साल अक्टूबर में कई हफ्तों तक चली झड़प के बाद युद्ध विराम पर सहमति जताई थी, लेकिन यह समझौता बाद में टूट गया दिखता है।

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
2: The Total Focus Group Australian International Masters 2026, hosted by Queensland Fiji Football Association QFFA, from 1st July till 5th July 2026 at the iconic Olympic FC Stadium in Yeronga, Brisbane, with 32 teams already confirmed participating across Fiji, Australia, New Zealand, Canada and United States. Festival atmosphere for the whole family, live entertainment, kids play zone and food stalls. For more information, contact President Jitendra Prasad, Chairman Imroz Mohammed and Secretary Aman Kumar, connecting the community. And a big thank you to our major sponsor, Total Focus Group.
3: ਭੈਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਖ ਕਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
4: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
3: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।
1: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
5: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं, तो उमसोक से बात कर। इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
6: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
5: अरे उमसोक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
6: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
5: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
6: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
5: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। वही ईरान ने दोहा में अमेरिका के साथ बैठक के ट्रंप के दावे को खारिज किया। जी हाँ, ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोहा में ईरान के साथ बैठक के दावे को खारिज कर दिया है। BBC फारसी सेवा के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बक्काई ने कहा कि आने वाले दिनों में ईरान अमेरिकी पक्ष के साथ किसी भी स्तर पर कोई वार्ता बैठक नहीं करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कतर में अमेरिकी प्रतिनिधियों की यात्रा का ईरानी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा से कोई संबंध नहीं है। BBC फारसी सेवा के मुताबिक ईरान के उप विदेश मंत्री और तकनीकी वार्ता टीम के प्रमुख काजिम गरीबाबदी ने भी कहा कि इस हफ्ते ऐसी कोई बैठक की योजना नहीं है। ईरानी अधिकारियों के ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के बाद आए, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के अनुरोध पर मंगलवार 30 जून को अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधि दोहा में मिलेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट ने बताया कि ट्रंप के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस बैठक में शामिल होंगे।

जी हाँ दोस्तों, और इससे पहले ट्रंप रोस्टिंग सेशन की तरफ हम जाएं, बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। जी हाँ, तो सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील ने बड़ा उलटफेर रोका। जापान को उन्होंने सेकंड हाफ में रोक दिया खतरनाक तरीके से। सो फीफा वर्ल्ड कप के अंतिम 32 के नॉकआउट मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हरा दिया है, और इसी के साथ ब्राजील इज इन द गेम। ये यप। इसी के साथ ह्यूस्टन में हुए इस रोमांचक मैच में हाफ टाइम तक जापान ब्राजील को गोल करने से रोकने में ना सिर्फ कामयाब रहा बल्कि एक गोल करके बढ़त भी बना ली। हालांकि आखिर के 45 मिनट्स में ब्राजील ने वापसी की और दो निर्णायक, लिटरली मतलब डिसाइडिंग गोल्स उन्होंने कर दिए। अगर ब्राजील ये मैच हार जाता तो 1966 के बाद ये पहली बार होता जब वो टूर्नामेंट में इतनी जल्दी बाहर होता। एंड फॉर ब्राजीलियंस, जो फुटबॉल है, जो सोकर है, इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स प्रेयर। मतलब उनके लिए ये पूजा है, उनके तो झंडे में भी फुटबॉल है। आप गेस कर सकते हो कि उनके लिए ये गेम कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई वॉज रियली होपिंग कि ब्राजील जो है वो इसमें आगे बढ़े, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। सो आई एम काइंड ऑफ हैप्पी। सो अंतिम 32 के इस मुकाबले में जापान ने ब्राजील को काफी हद तक रोके रखा, बढ़त भी हासिल कर ली और टीम काफी सहज भी नजर आ रही थी। मैच देख रहे लोगों के लिए उलटफेर की संभावना काफी वास्तविक लगने लगी थी। जी हाँ, मतलब उनको लग ही नहीं रहा था कि क्या चल क्या रहा है। मतलब उनको लग रहा था कि ओ शिट, जापान जीत गया। I mean, जो जापान को कर रहे थे सपोर्ट, दे वर लाइक ओके, यू नो व्हाट, वी आर गोना मेक इट। बट देन ब्राजील ने दिखा दिया कि क्यों वहां पर पूजा की जाती है फुटबॉल की। इसी के साथ यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ट्रम्प रोस्टिंग सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि ट्रम्प जो है हमें बहुत सारे कंटेंट देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ऑफकोर्स आपको पता ही है, कहा कि हमारी पीस डील जो है वो हो गई है, एएमयू जो है वो साइन हो गया, ओएमयू, और उसके बाद जो है इन्होंने फिर से एक दूसरे पर जो है वो मिसाइल्स ड्रोन्स चलाने शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस कंट्री मतलब इन दोनों कंट्रीज के बीच में चल क्या रहा है। और फिर जो है अभी ईरान ने कहा है कि ठीक है, यू नो व्हाट, ये जो भी कह रहा है ये इंसान की हमारी पीस डील जो है दोबारा हो रही है, इसकी कॉन्वर्सेशन जो है वो दोहा में होने वाली है, ऐसा होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी और रीजन की वजह से गए हैं, ये किसी और रीजन की वजह से गए हैं। यहां पर बड़े ही अच्छे से ट्रंप जो है वो बड़े अच्छे आते हैं कि ईरान हैज रिक्वेस्टेड अ मीटिंग, इट विल टेक प्लेस टुमारो इन दोहा। भाई ईरान वाले सामने से बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो सब छोड़िए, इससे भी ज्यादा फनी चीज ये हुई कि ट्रुथ सोशल पर ये बंदा जो है एक एआई जनरेटेड पिक्चर फिर से शेयर करता हुआ नजर आया। जी आप लोगों को तो पता ही है, ट्रुथ सोशल पर इनको बड़ा मजा आता है नई नई खतरनाक कातिलाना चीजें करते हुए। तो ट्रंप ने अपनी एआई इमेज जो है वो क्रिएट की है, जिसमें वो अर्थ को होल्ड करते हुए नजर आ रहे, जस्ट लाइक एटलस। जी हाँ, आपने सही सुना, यही करते हुए नजर आ रहे हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो एआई इमेज जनरेटेड इमेज शेयर की है, जहां पर वो लिटरली अर्थ को अपने शोल्डर्स पर लाइक एटलस जो है वो कैरी कर रहे हैं। और ये जो फिगर है वो एक ग्रीक माइथोलॉजी का फिगर है, आप कह सकते हो कि वो ग्रीक गॉड भी हैं एटलस, और उन्होंने ही ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से अर्थ को अपने ऊपर जो है अपने कंधों पर जो है वो रखा हुआ है, और सारा का सारा भार जो है, सारा का सारा वजन जो है, वेट जो है, वो वही संभालते हैं। ऑफकोर्स इट्स माइथोलॉजी, सो यहां पर ये चीज आपको नजर आती है। ऐसा आपको हिंदू माइथोलॉजी में भी देखने को मिलेगा, जहां पर लिटरली विष्णु भगवान के एक अवतार ने अर्थ को अपने ऊपर जो है वो रखा हुआ है, अपने सर पर जो है, अपने कंधों पर जो है वो पकड़ कर रखा हुआ है, ताकि वो कहीं भी ना जाए। अब ये तो माइथोलॉजी की बात हुई, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये अमेरिकन माइथोलॉजी कब से शुरू हो गई। मतलब हिंदू माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, दूसरी तीसरी और भी बहुत सारी माइथोलॉजीज है, लेकिन अमेरिका की भी अपनी माइथोलॉजी शुरू हो गई। अपेरेंटली यहां पर एटलस का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, कि भाई मैं तो देखो कितना बढ़िया इंसान हूं, पूरी धरती का जो वजन है मैंने अपने कंधों पर लिया हुआ है, और आप लोग मुझे गलत बोलते हो। हाउ कुड यू से दैट, हाउ कुड यू से यू नो बैड थिंग्स अबाउट मी, जब मैंने पूरी धरती का वजन जो है वो अपने कंधों पर लिया हुआ है। इनफैक्ट उन्होंने इस पोस्ट में जो है वो कैप्शन इंक्लूड नहीं किया, और लोगों को जो है उनकी इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ दिया कि आप खुद जो है जो समझना है इस पिक्चर को देख के समझ जाओ। और यहां पर प्रेसिडेंट जो है वो लिटरली अमेरिका के फ्लैग के साथ उन्होंने अपने आप को ड्रेप किया हुआ है, और ग्लोब को जो है उन्होंने अर्थ को जो है वो अपने लिटरली कंधे पर पकड़ा हुआ। आप लोग बोलोगे कि क्या कहा जाए, इस इंसान को कोई कुछ कहे अदरवाइज ये रुक नहीं रहा है। मतलब कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहते हैं ऐसा हो रहा है, कभी कहते हैं वैसा हो रहा है, कभी कहते हैं पीस हो रहा है, कभी कहते हैं लड़ाई हो रही है, और कभी तो ज्यूस ही बन जाते हैं, मतलब ज्यूस खुद ही बन जाते हैं, और कभी जीसस बन जाते हैं, कभी ज्यूस कभी जीसस, और यहां पर एटलस बन गए कि धरती का वजन जो है वो मेरे कंधों पर है, तुम्हें मेरे बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं तुम सबका कल्याण करने वाला हूं। मुझे लगता है कि ऐसे चलता रहा तो ये हमारी धरती को किसी और गैलेक्सी में फेंक देंगे लिटरली। मतलब जैसी एआई इमेज जनरेट इन्होंने की है, वहां से तो मुझे यही लग रहा है कि हमारी धरती को किसी और गैलेक्सी में फेंकने वाले हैं, और खुद भी जाने वाले हैं, क्योंकि ये बंदा लिटरली सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, ना रियल में ना सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे अलग ही तबाही मचाई हुई है अपनी एआई जनरेटेड इमेजेस से। मतलब ट्रंप की इमेजेस को देख के ऐसा लगता है कि क्यों बना एआई, एआई बना ही क्यों, मतलब ये इंसान कुछ भी कर रहा है अपने, कुछ भी। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Samsung ki mala pe sim room hai.
3: LKR event proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert. Performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store

0: well known for its quality service and reasonable prices.
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला खत्म हो गया। ट्रंप
0: टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला खत्म हो गया। ट्रंप को भी हमने रोस्ट कर लिया, लेकिन अब मुझे लगता है रोस्ट करने की जरूरत है मेसी को। आप लोग बोलोगे कि नहीं?

am a fan of Messi. The thing is कि हम मेसी को रोस्ट नहीं कर सकते लेकिन उनके स्टैचू को रोस्ट कर सकते हैं. सो लेजेंडरी अर्जेंटीनियन कैप्टन जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ को जो है वो अभी तक बिता दिया है फुटबॉल की हिस्ट्री को रीराइट करने में, उनके फैंस ने उनकी होम कंट्री में उनको एक और बहुत बड़ा तमगा दे दिया है. जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि क्या हुआ. वेल ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट हिज स्टैचू जो कि सबसे बड़ा स्टैचू है लियोनेल मेसी का अभी तक का, जो कि उन्हीं की कंट्री अर्जेंटीना में अनवेल किया गया है. जी हाँ, सो जब उन्होंने अपना वर्ल्ड कप में एक नया रिकॉर्ड जो है वो बना दिया है, सबसे ज्यादा गोल करने वाले वो बन गए हैं अपने सारे के सारे फीफा फॉर्मेट्स में, उनके लिए उनको ऑनर करने के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टैचू जो है वो अनवेल किया गया है अर्जेंटीना में. अब आप लोग बोलोगे दैट्स अ गुड थिंग, अब इसमें रोस्टिंग वाली बात कहां से आ रही है, मतलब इसमें रोस्ट करने वाला तो हमें कुछ भी नहीं लग रहा. वेल वो आपको तभी तक लगेगा जब तक आपने वो स्टैचू देखा नहीं होगा. जब आप उस स्टैचू को देख लोगे तो आपको लगेगा है ये मतलब उनको ऑनर करने के लिए किया गया कि उनकी बेइज्जती करने के लिए, मतलब उनको मतलब सच में रोस्ट करने का एक बहुत ही बड़ा जो है मुद्दा यहाँ पर दे दिया है. जिसने बंदे ने वो बनाया है उस बंदे को तो हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या उपाधि दी जाए, मतलब क्या बनाया है वो. एक तो वो पोज बहुत ही अजीब है, उसके बाद जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है वो बहुत ही अजीबो गरीब जगह पर रखी गई है. अगर आपने वो नहीं देखा स्टैचू तो उसकी फोटो जरूर देखिए. आई मीन आप अर्जेंटीना स्टैचू देखने नहीं जाएंगे, सो आप फोटो देख सकते हैं इंटरनेट पर. और आप मुझे बताइए कि आपने क्या सोचा उसके बाद में. आपको मैं बता दूं कि पैटागोनिया में लोकल आर्टिस्ट ने जो है इसको मैसिव स्टैचू को जो है वो बनाया है, और ये 85 फुट का स्टील मॉन्यूमेंट है जिसको डेडिकेट किया गया है सुपरस्टार को. जी हाँ, और ये 70 टन्स का है. जी हाँ, ये जाइंट लैंडमार्क जो है डिपिक्ट करता है कि ये आइकॉन जो है, मतलब लिटरली ये जो बंदा है ये क्या जबरदस्त जो है वो यू नो वॉट जो जगह अपने फैंस के दिल में रखता है, खासकर अपनी होम कंट्री में. लेकिन वो जो लास्ट टाइम उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप, ऑफकोर्स दे आर द विनर्स राइट, दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस इन दिस फीफा, सो ऑफकोर्स उनके पास ऑलरेडी जो है वो फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पड़ी हुई है, मतलब वो जीत चुके हैं. तो वही फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उस स्टैचू के साथ रखी गई, अजीबो गरीब जगह पे रखी गई. और या आई मीन आई एम नॉट गोना से मच, बट आई लिटरली वॉन्ट यू टू सी द स्टैचू एंड द फोटो ऑफ द स्टैचू. एंड आप फिर मुझे बताइए कि क्या आपको नहीं लगता कि ये रोस्ट करने का एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया गया है अर्जेंटीनियन फैंस और वो डब्बू, या आई एम गोना से दैट डब्बू आर्टिशियन जिसने वो स्टैचू बनाया है. मतलब क्या क्या क्या क्या चल क्या रहा था उस बंदे के दिमाग में. जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ यहाँ पर एक फरमाइशी गीत प्ले करने का वक्त हो गया है। जी हाँ, फरमाइशी गीत जो कि आया है हमारे बहुत ही खास लिसनर जस्सी जी की तरफ से। गाने का नाम है तू पावे बोल या ना तू बोल, नहीं पावे बोल ते पावे ना बोल, और ये शमशाद बेगम का गाना है। बहुत फिल्म दो लच्छियां का गाना है। जी हाँ, और ये गाना जो है वो बहुत ही पुराना, इतना मैं कह सकती हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट एरा का। सो शमशाद बेगम की आवाज जो है वो कितनी बुलंद है के बारे में मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच जस्सी जी, हमेशा की तरह जबरदस्त फरमाइशें करने के लिए और हमारे प्रोग्राम में एक वाइब ऐड करने के लिए। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। ये रहा आपका ये जबरदस्त सा गाना।

जी दोस्तों, और इसी के साथ कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और मैंने कुछ देखा और वो बड़े पते की चीज थी, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और खासकर ट्यूसडे है आज, तो भर भर के काम हमें करना होता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को। तो ऑफकोर्स हमारी जो डीलिंग्स है हमारे मैनेजर्स टीम लीड्स और बॉसेस के साथ जो है वो बढ़ जाती है। तो वहां पर जो लिखा हुआ था मैं आपको बताने वाली हूँ, आप भी उसे ध्यान में रखिए और कभी अगर इसको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े तो कर लीजिएगा। सो मैनेजर कहता है, इफ यू राइट थिंग्स इन अ डायरी यू वॉन्ट फॉरगेट। जी हाँ, सो मैनेजर ने कहा है मुझे कि इफ यू राइट things in a diary you won't forget, so I told him to write about my air and salary and hike in his diary. जी हाँ, so of course manager जो है वो खुद ही सलाह दे रहा है कि अगर आप अपनी डायरी में चीजें लिखोगे, if you write things in your diary you won't forget, तो मैंने भी सामने से कह दिया कि okay, so I told him to write about my air and salary hike in his diary, ताकि वो भी ना भूले। मतलब ठीक है, काम करना हम नहीं भूलेंगे, air and salary bonuses वगैरह आप मत भूलना, बात सही है, एकदम सही चलती रहेगी हमारी सरकार। जी हाँ, सो अगर आप लोगों को भी आपके बॉसेस ऐसे बोलते हैं सिर्फ काम काम के लिए, और एयर एंड सैलरी जो हाइक्स होते हैं बोनसेस में, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं इतना नहीं होगा, उतना नहीं होगा, या अच्छा बोनस नहीं मिलता है, तो आप भी इस चीज को अपनी डायरी में लिखिए और उनको बोलिए लिखने के लिए कि ताकि वो भी ना भूले। हम भी नहीं भूलेंगे, आप भी मत भूलो, हम काम नहीं भूलेंगे, आप बोनस मत भूलो। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही खूबसूरत है, और इसी गाने के साथ हम ऑफिशियली शुरू कर रहे हैं हमारे ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट को।

0: ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 50 ਸੈਂਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1600 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਨੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੁਐਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫਾਰ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। Phone 3630-5438, 3630-5438, या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी।
4: डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
5: एल के आर इवेंट प्राउडली प्रेजेंट्स वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूर 2026। दिस जुलाई एक्सपीरियंस द मैजिक लाइव।
6: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, और शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे नीवा के साथ। दोस्तों, खूबसूरत गाने तो हमने आपके लिए पहले ही प्ले करने शुरू कर दिए थे, और वो खूबसूरत गाने जो हैं उन्होंने एक खूबसूरत सी वाइब भी बना दी। तो आइए जरा आपको किस्सों की तरफ भी लेकर चलते हैं। सो एक घर हो सपनों का। जी हाँ, आपने ये मूवी देखी है या नहीं देखी है? वेल, आपने देखी होगी, क्योंकि अगर आप धर्म पाजी के फैन हो तो आपने मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी देखी होगी। लेकिन इस मूवी के से रिलेटेड एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है जो कि मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। सो इससे पहले ही जो कुछ मूवीज धर्मेंद्र जी ने की थी, द ही मैन ऑफ बॉलीवुड ने की थी, उन्होंने प्रूव कर दिया था कि उन पर जो है वो सबसे अच्छी आवाज रफी साहब की लगती है। लेकिन जो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर थे और डायरेक्टर थे, उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं नहीं नहीं, इस मूवी में धर्म पाजी को तो वो लेंगे, लेकिन उनकी आवाज वो बनाएंगे किशोरदा को। अब जब ये बात म्यूजिक डायरेक्टर रविशंकर को और साथ में लिरिसिस्ट सुधा साहिर लुधियानवी जी को पता चलती है, तो वो उनको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो सर, ऐसा मत करो, क्योंकि रफी साहब की ही आवाज जो है वो सूट करती है ज्यादा धर्म पाजी पर और उन पर। तो ऐसे में उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि किशोरदा की आवाज जो है वो बहुत अच्छी लगेगी। किशोरदा से उन्होंने 2 गाने गवाए। अब किशोरदा की आवाज तो वैसे ही बहुत मैजिकल थी। जी हाँ, किशोरदा की आवाज सुनकर गाना जो है वो पहले ही एकदम मजेदार जो है वो साउंड कर रहा था। ऑडियो की बात करें तो लिटरली लोग जो है वो इस मूवी के गानों के दीवाने बन गए। लेकिन जब बात आई वीडियो की और लिप सिंकिंग के साथ जो वो तालमेल बैठेगा किशोरदा की आवाज और साथ में धर्मेंद्र जी की वो लिप सिंकिंग, क्या वो उतना कमाल कर पाएगी? जब उसकी बारी आई देखने की, तो लोगों को वो बहुत ही अजीब लग रहा था। उनको लग रहा था कि नहीं नहीं ये तो गड़बड़ है। जी हाँ, अब ऐसे में फिल्म जो है वो अपनी आखिरी सिचुएशन में पहुंच गई थी और आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई थी। तो ऐसे में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने जब खुद इसे देखा तो उनको खुद भी बहुत ज्यादा अटपटी वो चीज लगी। आखिरकार उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी। उनको लग गया पता कि ओके डैमेज कंट्रोल करने का वक्त जो है वो आ गया है। अगर अभी डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो बात नहीं बनेगी। उन्होंने दो गानों के बजाय बाकी के सारे गाने रफी साहब से गवाए, क्योंकि रफी साहब और धर्मेंद्र जी की आवाज इतनी खूबसूरत तरीके से एक दूसरे के साथ तालमेल बनाती थी कि उसके बारे में किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मतलब वो एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती थी। जैसे कि शम्मी कपूर साहब की आवाज, जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन और साथ में उनकी लिप सिंकिंग और साथ में रफी साहब की आवाज। अब ऐसे में जब राजेश खन्ना की बात होती है तो ऐसा कहा जाता था कि किशोर दा की आवाज उन पर ज्यादा सूट करती थी। अगर देवानंद साहब की बात होती थी तो उधर भी कहा जाता था कि किशोर दा की आवाज उन पर ज्यादा सूट करती थी। अगर हम राज कपूर की बात करें तो ऐसा कहा जाता था कि मुकेश की आवाज राज कपूर पर ज्यादा सूट करती थी। और ऐसे ही ये ट्रेंड जो है वो बन गया था। सो ऐसे में उस ट्रेंड को तोड़ने की कोशिश जो है वो इस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने की थी, लेकिन बाद में उनको समझ आ गया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा। रफी साहब से ही उन्होंने बाकी के सारे गाने गवाए और फिर उन्होंने कहीं डैमेज कंट्रोल इस मूवी का किया। यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, अगर आप शशि कपूर साहब के फैन हो ना, तो आपको उनके इंटरव्यू सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब आप उनके इंटरव्यू सुनोगे या देखोगे, तो आपको वो इंसान और भी ज्यादा पसंद आ जाएगा। वेल, आप सबको तो पता ही है कि आपकी आरजे निविया जो है वो बहुत बड़ी फैन है शशि कपूर साहब की। और सच में, मतलब वो लिटरली वन ऑफ द बेस्ट ड्रेस्ड यू नो पीपल में से एक थे, और एक्टर्स में से एक थे। और उनकी एक्टिंग, उनकी यू नो वॉट, उनकी वो स्माइल, उनकी वो खूबसूरती, मतलब कितने हैंडसम थे। चलिए, ये सब चीजें तो एक तरफ हैं, जिसके हम ऑफ कोर्स उनकी मूवीज में उनको देख के ही कायल हो गए थे, लेकिन यहाँ पर उनकी जो बातें थी, जो रियल में अगर आप उनकी बातें सुनते, तो ही वाज सच अ रियल पर्सन। मतलब कोई ऐसे यू नो वॉट एरोगेंस या कुछ भी आपको उनके चेहरे पर नजर ही नहीं आएगी। वो इतने बड़े स्टार थे, लेकिन जब भी आप उनके इंटरव्यूज देखोगे, तो वो इतने मजेदार इंटरव्यूज वो दिया करते थे, बड़े ही अच्छे से वो बात किया करते थे अपने जो इंटरव्यूअर्स उनके होते थे। तो एक इंटरव्यू में वो ऐसे ही बात कर रहे थे, जब उनसे कुछ कहा गया उनकी शादी के बारे में और उनके प्यार के बारे में, तो बड़े ही अच्छे से शशि कपूर साहब कहते हैं, और कुछ 100 साल से तो मैं शादी कर चुका हूँ, शादीशुदा हूँ जेनिफर के साथ। जी हाँ, ये थे, ये बोल थे शशि कपूर साहब के। और आप सबको तो पता ही है, हमें भी पता है, और इनके साहब को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि शशि कपूर साहब को बहुत छोटी उम्र में ही जेनिफर जी के साथ हो गई थी मोहब्बत, पहली नजर की मोहब्बत। जी हाँ, मतलब वो बंदा रियल में प्रूव करता है कि पहली नजर की मोहब्बत जो है वो खूबसूरत होती है, और पहली नजर की मोहब्बत जो है वो कामयाब भी होती है। बस फिर क्या था, उन्होंने शादी करी जेनिफर के साथ, अपना घर बसाया, और पूरी की पूरी जिंदगी उनके आशिक बनके रहे। जेनिफर जी उनको छोड़कर जल्दी ही चली गईं, लेकिन उन्होंने फिर भी ये दिखा दिया कि इश्क अगर है किसी से, मोहब्बत अगर है किसी से, तो आप सच में उनके दीवाने बनके रहते हो, फिर चाहे वो इंसान इस दुनिया में हो या ना हो। इस इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने यही कहा कि जब आप मतलब ऑफकोर्स वो बात हो रही थी कि उनकी शादी के बारे में, उनके प्यार के बारे में, तो उन्होंने बड़े ही अच्छे से कहा कि 100 साल से तो मैं जेनिफर से शादीशुदा हूं, और मैं जेनिफर से बात भी कर रहा था कि नहीं, पहले जो है वो ऑफकोर्स जेनिफर से बात करने वाली बात से पहले उनको इंटरव्यूअर जो है वो बोलता है कि उनके साथ पिछले जन्म का कुछ रहा होगा। तो सामने से शशि कपूर साहब कहते हैं कि पिछले जन्म का तो होगा ही डेफिनेटली, लेकिन मुझे लगता है कि आगे वाले जन्म का भी है, आगे वाले जन्म में भी वही आने वाली है। जी हाँ, और वो फिर अपना किस्सा भी बताते हैं। वो कहते हैं कि जेनिफर से मैं बात कर ही रहा था कि कैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगले जन्म भी आपके साथ ही कुछ होने वाला है, आप ही आने वाली है मेरी जिंदगी में। मतलब एक इंसान जो इतना ज्यादा मोहब्बत में है किसी लेडी से, मतलब कितनी खूबसूरत चीज है ये, राइट? मतलब आप उनके चेहरे पे देख सकते हो, आप उनके इंटरव्यूज में, उनकी बातों में सुन सकते हो। और ऑफ कोर्स जब जेनिफर चली गई थी इस दुनिया से, रुखसत हुई वो, तो उसके बाद उन्हें संभलने में कितना वक्त लगा, ये भी बहुत बड़ा जो है वो एग्जांपल है कि वो अपनी वाइफ को, अपनी वो पहली मोहब्बत को भूलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन ये कहना कि पिछले जन्म का नाता तो उनके साथ था ही, लेकिन मुझे लगता है कि अगले जन्म का भी है, और मैं उनसे यही कह रहा था कि अगले जन्म भी आप ही आने वाली हैं, कितनी बड़ी बात है, कितनी खूबसूरत चीज है, राइट? मतलब हम बोलते तो है 7 जन्म की बात और बहुत सारी चीजें, लेकिन कितने ही लोग इतनी खूबसूरती से अपनी शादी को निभा पाते हैं, अपने प्यार को निभा पाते हैं। आई थिंक शशि कपूर इज वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट बेस्ट पर्सन पीपल ऑन दिस अर्थ। जी हाँ, एंड वॉज the best person on this earth। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेने का हो गया है वक्त। जा रहे हैं हम, लेकिन वापस आएंगे कल और बहुत ही मजेदार सा प्रोग्राम आपके लिए लेकर आएंगे। गपशप करेंगे, गाने भी सुनाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। अच्छा, सब कुछ अच्छा अच्छा करेंगे। और आज आपको क्या करना है? वेल, मजे करने हैं, हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना, मुस्कुराते रहना, गाते रहना है, खाते रहना है, और साथ में अपनी आरजे निविया को याद करते रहना और सुनते रहना रेडियो ब्रिजवानी को, क्योंकि रेडियो ब्रिजवानी पे हम आपको एंटरटेन रखते हैं पूरी तरह से। इसी के साथ बाय बाय, सी यू टाटा। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए, खूबसूरत सा गाना मेरी तरफ से।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अति
0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल

0: चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सियासी घमासान। जी हाँ, क्वींसलैंड की सरकार इस समय एक गंभीर विवाद में घिर गई है। रिपोर्ट आई है कि शेल्टर होम में जगह न होने के कारण कई अनाथ और कमजोर बच्चों को सरकारी दफ्तरों के फर्श पर सुलाया गया। विपक्ष ने हमलों के बाद क्वींसलैंड के प्रीमियर डेविड क्रिस्टोफोली ने माना कि ऐसा इमरजेंसी में करना पड़ा ताकि बच्चे सड़कों पर सोने में को मजबूर न हो। वहीं क्वींसलैंड की अर्थव्यवस्था पर रेटिंग घटने का खतरा। फाइनेंस की दुनिया से ब्रिस्बेन के लिए एक चिंताजनक खबर है। कोयले की रॉयल्टी से अच्छी कमाई होने के बावजूद क्वींसलैंड की इकोनॉमी पर ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग घटने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में बारिश ने तोड़ा 128 साल पुराना रिकॉर्ड। मौसम में ऑस्ट्रेलिया में भी हाहाकार मचाया हुआ है। एक विशाल रेन बैंड की वजह से क्वींसलैंड से लेकर विक्टोरिया तक बेहद भारी बारिश हो रही है। विक्टोरिया के बोंडिगो शहर में जून के महीने में पिछले 128 सालों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। वहीं ब्रिस्बेन लायंस AFL कोच ने सीनियर खिलाड़ी के भविष्य को लेकर दिया बड़ा हिंट। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के सबसे लोकप्रिय खेल AFL से ब्रिस्बेन लायंस के फैंस के लिए बड़ी खबर है। टीम के कोच ने मीडिया से बातचीत में इशारा किया है कि टीम के एक बहुत ही सीनियर और दिग्गज खिलाड़ी अगले सीजन में भी टीम के साथ बने रह सकते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ ब्रिस्बेन में बड़ा मार्च। जी हां, ब्रिस्बेन शहर में आज घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं और सामाजिक संगठनों ने एक बहुत बड़ा मार्च निकाला। इस मार्च का उद्देश्य सरकार से घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए और ज्यादा सुरक्षित शेल्टर होम और सख्त कानून मदद की मांग करना था। वहीं ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पर नई हाईटेक सुरक्षा प्रणाली की टेस्टिंग शुरू। ट्रेवल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आज से एक नई और एडवांस सुरक्षा जांच प्रणाली की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले पेट्रोल डीजल की बिक्री पर लगी पाबंदियां हटी। पहली बड़ी खबर देश के आम लोगों और कारोबारियों के लिए है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की रिटेल बिक्री पर लगी सभी पाबंदियों और लिमिट को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इसके साथ मुंबई और महाराष्ट्र में मॉनसून का अलर्ट, उड़ाने प्रभावित। मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण मुंबई आने जाने वाली फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में जून के महीने में सूखे जैसे हालात। एक तरफ जहां मुंबई में भारी बारिश है, वहीं हिमाचल प्रदेश से एक चिंताजनक खबर है। इस साल जून के महीने में हिमाचल में 33% कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में अगस्त में आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल सरकार इसी साल अगस्त में विधानसभा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC बिल पेश करने जा रही है। वहीं कर्नाटक में आज से घर घर जाकर नया सर्वे शुरू। कर्नाटक सरकार और चुनाव आयोग ने आज यानी 30 जून से पूरे राज्य में एक खास सर्वे शुरू किया है। इसके तहत अधिकारी घर घर जाकर लोगों के परमानेंट रेजिडेंसी और पते की जांच करेंगे। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले अमेरिका और ईरान के बीच कतर में होने वाली बातचीत पर सस्पेंस। इंटरनेशनल खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़े डिप्लोमेटिक सस्पेंस से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि आज कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच एक अहम बैठक होने वाली है। हालांकि दूसरी तरफ ईरान ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है। वहीं यूरोप और अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी। मौसम का मिजाज पूरी दुनिया में बदल रहा है। इस समय यूरोप के कई देशों और पूरे अमेरिका में भीषण हीट वेव चल रही है। तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं वर्ल्ड बैंक का क्लाइमेट फंडिंग को लेकर बड़ा फैसला। वर्ल्ड बैंक ने पर्यावरण को लेकर दिए जाने वाले लोन के अपने पुराने टारगेट को बदल दिया है। नए नियमों के तहत अब उन देशों को ज्यादा मदद दी जाएगी जो जमीनी स्तर पर कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए तुरंत कड़े कदम उठा रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया और वानुआतू के बीच हुए ऐतिहासिक सुरक्षा डील, जहां पैसिफिक महासागर के इलाके में शांति बनाए रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने वानुआतू देश के साथ एक बड़ा सुरक्षा समझौता पक्का कर लिया है। वहीं ट्रेड वॉर को रोकने के लिए चीन और यूरोपीय संघ की बैठक। दुनिया के बिजनेस बाजार से खबर है कि चीन और यूरोपीय संघ के बीच आज से 3 महीने लंबी चलने वाली व्यापारिक बातचीत शुरू हो रही है। इस बातचीत का मकसद दोनों पक्षों के बीच चल रहे टैक्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के विवादों को शांति से सुलझाना है। इसके साथ ब्रिटेन ने यूक्रेन युद्ध से सीख कर बदली अपनी डिफेंस पॉलिसी। ब्रिटेन सरकार ने अपनी सेना और देश की रक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उन्होंने यूक्रेन में चल रहे युद्ध की रणनीतियों और तकनीकों को देखकर अपनी आर्मी को नए आधुनिक हथियारों और ड्रोन टेक्नोलॉजी से लैस करने का फैसला किया है। इसके साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप 2026, पैराग्वे ने जर्मनी को हराकर किया बड़ा उलटफेर। जी हां, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट स्टेज में फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पैराग ने 4 बार की चैंपियन जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। वहीं फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज होने वाले हैं 3 बड़े नॉकआउट मुकाबले। फीफा वर्ल्ड कप में आज का दिन बेहद रोमांचक होने वाला है। आज 3 बड़े करो या मरो वाले मैच खेले जाएंगे। पहला मैच आइवरी कोस्ट और नॉर्वे के बीच होगा, दूसरा मुकाबला फ्रांस और स्वीडन के बीच और तीसरा मैच मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच खेला जाएगा। वहीं एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान भी कर दिया गया है। वहीं विंबलडन टेनिस, यानिक सिनर की शानदार वापसी। टेनिस कोर्ट से खबर है कि विंबलडन के एक बेहद कड़े मुकाबले में इटली के स्टार खिलाड़ी यानिक सिनर ने हार के कगार से उठकर एक शानदार वापसी की और मैच जीत लिया। इसी के साथ आयरलैंड के हेड कोच ने दिया अचानक इस्तीफा। क्रिकेट की दुनिया से एक हैरान करने वाली खबर है। भारत के खिलाफ T20 सीरीज में ऐतिहासिक 2-0 की जीत दर्ज करने के ठीक कुछ घंटों बाद आयरलैंड क्रिकेट टीम के हेड कोच ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 170।
1: LKR Event proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Samsung ki mala pe sim room hai.
3: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert. Performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
4: ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
5: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
4: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नु तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
6: कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
7: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्म आके गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। That's 3804-3818।

वेलकम आदाब जी, सत श्रीकाल जी। तुसी बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101 एम ते जी आर छे संदेश शलक दे नाल सिमान चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहना जवड़ा शुरू हो चुका है जी। ते इस वेले दे दौरान असी गल्लां तां करनियां ही करनियां ने, नालों नाल इन्हां गल्लां नूं असी पंजाबी गीतां दा तड़का हमेशा दी तरह जरूर लगाउणा है। तां इस शब्द विच तुसी की करना है, तुसी बस जुड़ना है साडे नाल, बड़बड़ के जुड़ना शुरू करो। रेडियो बिस्वानी 101 FM फेसबुक पेज है जी, तो bisswani@bisswani.com ईमेल आई टी है जरिए जेड़ा तुहानू चंगा लगता है तुसी अपना सकते हो, पर साडे नाल गल्लां बातां देखो जरूर करते रह करो, है ना। तो फटाफट दे नाल तुसी चको अपना फोन ते जुड़ो साडे नाल। मैं हुणे वापस आउंदी हां, उन्हां समां इह सोहणे जी गीतां नूं इंजॉय जरूर करो।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 107.1 एम ते जी आर चे संदेश शलक दे नाल से बने हुए। हुण मैं जेड़ी सीरीज बारे सब तो पहला दसनी हैगी है ओ नू तुसी देख लोगे ना जो सीरीज नू ता तुसी ना एक बहुत ही फेमस हुई है सीरीज असुर जिदी हमेशा गल चलती है। तुसी असुर नू भी भूल जाओगे, इन्नी ज्यादा सोहनी है। ते उसका नाम पता की है? उसका नाम है दहाड़ जी। हाल इस दिविच पहला नाम ही दहाड़ ता है। ते इस सीरीज दिविच सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल दिविच है की है। 2023 विच रिलीज हुई सी है सीरीज। ए सीरीज अमेजोन प्राइम वीडियो ते हैगी है, उत्थे जाके तुसी देख सकते हो। इसे हर एक एपिसोड विच तुहानू शानदार एक्शन देखण नू मिलूगा, बहुत ज्यादा सोहनी हैगी है। इस विच उहनां दे नाल मतलब सोनाक्षी सिन्हा दे नाल विजय वर्मा भी है ते गुलशन देवैया भी है। ज्यादा मैं रिवील नहीं करूंगी, जे तुसी नहीं देखिया तां इन्ना जरूर कहूंगी कि जिहड़ा एक्टर तुहानूं हर जगह हीरो हीरो हीरो हीरो नजर आउंदा उही कुछ अजिहा कर जांदा है कि तुसीं सोच ही पै जाओगे। ते सोनाक्षी सिन्हा दी बहादुरी तां काबिले तारीफ है, एक्टिंग बहुत ज्यादा शानदार कीती है। तुसीं देखियो जरूर एक बार।
1: मुंडा साधुआं दा

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Bijli ka bill dekh kar har mahine shock lagta hai kya? To ab switch karo solar par. Free solar power ke saath. Aapke local CEC approved solar experts. Ghar ho ya business. Hum sab ke liye solar panels, batteries aur commercial systems ko supply aur install karte hai. Taki aap bacha sake paise. और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें. रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896. दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.

0: तुम पक्के तौर ते साडा हो जांदे।
1: जी आनु जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101 एम ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो जे थानू पाताल लोक देखनी बहुत ज्यादा वधिया लगती है तां इह लिस्ट विच पाताल लोक ही है दूजे नंबर ते, जे तुसी देखे होए पाताल लोक दे दोनों सीजन, क्योंकि बहुत वधिया है। ते जे तुसी जदी पलावत दे फैन हैगे हो तां पाताल लोक तां बेस्ट ही है ना। देखो ये सीरीज ना लोगों को खूब पसंद आई है। इस सीरीज विच थानू जबरदस्त थ्रिलर ते सस्पेंस दोनों चीजा देखने मिलेंगी। जेकर थानू सस्पेंस वाली सीरीज पसंद हैगियां ने तां तुसी इसनू अपनी वॉच लिस्ट विच शामिल कर लो। ये सीरीज प्राइम वीडियो ते देखी जा सकती है। जदी पलावत दी जिवें पहला गल कीती ना, तुसी जदी पलावत दे फैन हो ना तां इह जबरा फैन बना दूगी इस सीरीज थानू उहनां दा।
2: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
4: Vadere kifayati rihaish di shuruaat vadere karan di upalabdhta naal hundi hai. Ise layi nave Queensland sarkar soobe bhar vich 98,000 ton vi vadh nave karan de nirman da raah khol rahi hai. असी होर घर जल्दी बनाने लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रहे हैं। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हैं। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हैं। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। Authorized by the Queensland Government, Brisbane. ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। Authorized by the Queensland Government, Brisbane. ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। Authorized by the Queensland Government, Brisbane.

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असीं 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असीं होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोनी 101 एम ते जीआर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। बहुत होगी बॉलीवुड की गल, थोड़ी हॉलीवुड वाल भी नजर मार लेने जी। हाँ, क्योंकि जी मैं हमेशा कहनी हूं ना कि मैं सिर्फ बॉलीवुड बारे नहीं पूरी दुनिया बारे गल करनी हैगी है। तो जेड़ा तीसरे नंबर से जिहड़ी सीरीज दी मैं गल कर रही हूं वह बाहर की ही हैगी है, इंडियन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नाम है जी उसका ब्रिज सीजन 1। यह सीरीज ना सस्पेंस नाल भरी है जिसनों दर्शकों वालों बहुत ज्यादा प्यार है ते सपोर्ट मिल रहा है। इस सीरीज नूं भी तुसी प्राइम वीडियो ते देख सकते हैं, बहुत ज्यादा शानदार सीरीज हैगी है। इना कुछ खास खास हर एक पल ते हुंदा जाऊगा ना कि तुसी खुद सोची पै जाओगे कि यह भी हुंदा, तो जरूर देखियो ब्रिज सीजन 1।
1: On it.

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

जी एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 एम ते जी आरचे संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए हो। साउथ दियां मूवीज़ दा भी एक अलग ही क्रेज हुंदा है क्योंकि साउथ दियां मूवीज़ बहुत ज्यादा वधिया हुंदियां ने ते साउथ दे एक्टर्स भी ताइयों सानू बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं बहुत ज्यादा वधिया लगते हैं। ते जे गल विजय सेतुपति की करिए ना तो विजय सेतुपति ने जदों तो जवान ते विच देखिया ना विजय सेतुपति नूं उह तां उसदे तां फैन ही हो गए सब। विजय सेतुपति की सीरीज भी इस लिस्ट विच शामिल है ते उह सीरीज हैगी है जी फर्सी। जी हां विजय सेतुपति दे नाल इस सीरीज दे विच शाहिद कपूर ने लीड रोल दे विच यह सीरीज थ्रिल ते सस्पेंस नाल भरी हुई है। नाम तो ही पता लग रहा है फर्जी बहुत कूल जिहा अंदाज दिखाया होया इत्थे इन्हां दा ते बहुत ही सोहनी सीरीज हैगी है। एक फादर सन दा बॉन्ड भी दिखाया होया है एक्शन भी बहुत है सस्पेंस भी थ्रिलर भी क्राइम भी सब कुछ हैगा तो तुसीं इस नूं एक बार जरूर अपनी वॉचलिस्ट विच पाओ।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: मिस्टर बाज़ म्यूज़िक।

जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो जी आर चे संदेश अलग दिन बने हुए हूं। अगले नंबर की जो गल करिए उसके आंदा जी अफसोस छेवा नंबर आ गया है, शायद तुम ध्यान नहीं दिता पर छेवा नंबर आ गया अफसोस वैब सीरीज मौजूद है। इस सीरीज कमाल का थ्रिलर देखने मिलेगा, ब्लैक कॉमेडी सीरीज है की है। उस बाद लास्ट आवर भी है, लास्ट आवर भी इस शामिल है। एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है जिस विच कमाल दे ट्विस्ट दे टर्न्स देखने मिलते हैं। जेकर तुहानू इस नू एक बार देखना तुसी शुरू किया ना तो तुसी पूरा किते बगैर उठ ही नहीं पाओगे, इन्नी वधिया है सीरीज।

0: देखो इन्हीं सारिया सीरीज बारे तो दसता हैगा है मैं जो सस्पेंस थ्रिलर दे नाल भरपूर हैगिया ने तुहानू केड़ी सब तो ज्यादा पसंद हैगी है जे तुसी इन्हां दे विचों सारिया नू देख चुके हैगे हो या फिर जे तुसी अपकमिंग वीकेंड दे विच इन्हां नू देखण दा प्लान कर रहे हैगे हो तां केड़ी नू देखण दा प्लान कर रहे हो मैनू जरूर दसो एक बार तां जुड़ते रहा करो साढ़े नाल रेडियो प्रसवानी 107.1 FM साडा फेसबुक पेज है जी ते प्रसवानी एट प्रसवानी .com साडी ईमेल आईडी है जरिए जेड़ा भी अपनाउणा हो अपनाओ पर साडा गलबात जरूर करो तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू करो मैं कल करूंगी मुलाकात तुसी रखो अपना ख्याल सत श्री अकाल
1: एक तो परवरदिगार के बारे में ना बोलिए और

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। उमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असीं 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असीं होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख ना चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: KR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनवीर फ्रॉम द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: LKR Event proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में. फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद. कॉल नाउ ऑन 04111270355. रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर. For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार आई एम सो वरीड। Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए वेद

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चानी जैन, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के बीच प्रोग्राम चानी का सफर। आशा करती हूं आप सभी रेडियो प्रसवानी में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा मनोरंजन आप सभी का हो रहा है और आगे भी होता रहे। तो आज है 1 जुलाई, यानी कि नया महीना, नए गोल्स और नई उम्मीदें लेकर आए हैं। जी हाँ, आज के शो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, इंडिया की, देश और दुनिया की बहुत सारी खबरें जानने वाले हैं, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन भी करेंगे, बहुत सी बातें बॉलीवुड, जी हाँ, साथ ही साथ फन फैक्ट्स भी होंगे। आप सभी कहीं मत जाइएगा क्योंकि बहुत सारी बातें आप सभी से करनी है। जी सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी और आइए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम के इस गीत के साथ।

स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेडियो ब्रिस्वानी में। तो आइए, वक्त हो चुका है कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स जानने का। क्वींसलैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन कमीशन ने नए इलेक्ट्रल बाउंड्रीज फाइनल कर दिए हैं। दो पुरानी सीट्स को रिप्लेस किया जाएगा और लगभग 48 इलेक्टोरेट्स की बाउंड्रीज जो है वो रीड्रॉ होंगी। आपको बता दें कि ये बदलाव 2028 स्टेट इलेक्शन से लागू होंगे। वहीं पर अगर हम बात करें अगले खबर की, तो 1 जुलाई से साउथ ईस्ट क्वींसलैंड इंक्लूडिंग ब्रिस्बेन में अर्बन यूटिलिटीज के वाटर और सीवरेज चार्जेस से बढ़ गए हैं। एवरेज हाउस होल्ड जो है उनके एनुअल बिल में लगभग $62 का इंक्रीज होगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है। ऐसी अपडेट्स और जानेंगे थोड़ी ही देर बाद। आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्बेन में।

इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी सुन रहे हैं जानने का सफर, और इस सफर में हम यहाँ पर न्यूज अपडेट्स जान रहे हैं। तो आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें कि सोक्रूज वर्सेस ब्राजील अनाउंस्ड हुआ है। ऑस्ट्रेलियन मैन्स फुटबॉल टीम जो है वो सोक्रूज सितंबर में ब्रिस्बेन और सिडनी में 5-time वर्ल्ड चैंपियंस ब्राजील के खिलाफ इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। साथ ही बताएं आपको कि फुटबॉल फैंस के लिए ये साल की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग अनाउंसमेंट्स में से एक मानी जा रही है। वहीं पर बात करें तो ब्रिस्बेन प्रोटेस्ट एंड्स आफ्टर 23 आवर्स, क्योंकि कुरिल्पा कॉमन एरिया में एक एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट के दौरान ट्री पर बैठी प्रोटेस्टर को इमरजेंसी सर्विस ने लगभग 23 घंटे यानी कि 23 आवर्स बाद जो है वो सेफली नीचे उतारा, और इस ऑपरेशन के लिए पावर लाइंस भी टेम्पररी जो है रिमूव करनी पड़ी। इसी के साथ जानेंगे अगली न्यूज को, तब तक के लिए आप सुने रेडियो ब्रिस्वानी में ये गीत। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो बिस्वानी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2032 ओलंपिक गेम्स की तैयारियों के तहत ब्रिस्बेन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। स्टेडियम और स्पोर्ट्स वीनस से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रोग्रेस पर है। साथ ही दोस्तों क्वींसलैंड ओपन टेनिस, जी हाँ, क्वींसलैंड टेनिस सेंटर में अगले हफ्ते शुरू होने वाले क्वींसलैंड ओपन के लिए रिकॉर्ड एंट्रीज मिली है, जिससे कि स्टेट का टेनिस कैलेंडर और भी एक्साइटिंग बन गया है। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो इसी के साथ अगर आप सभी को भारत की खबर बताई जाए तो मानसून देश के कई हिस्सों में तेजी से बढ़ रहा है और कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। सफर से पहले लोकल वेदर अपडेट जरूर देख लीजिए। आइए इसके साथ सुनते हैं रेडियो ब्रिस्वानी में अगला गीत। आप सभी बने रहिए मेरे यानी आपकी दोस्त आरजे शानी जैन के साथ जाने के सफर प्रोग्राम में।

हाँ जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। वैसे दोस्तों, आज है 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई। अगर आज के दिन से जुड़ी कुछ खास बातें की जाए तो 1 जुलाई को इंडिया में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, जो डॉक्टर्स के योगदान को सम्मान देने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं पर इसी दिन, यानी कि आज के दिन ही, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे जो है वो भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो है इन्हीं की स्थापना हुई थी। जी हाँ, इंडिया में इसकी स्थापना हुई थी। और आज अगर आप किसी डॉक्टर या फिर हेल्थ के वर्कर को जानते हैं तो उनको एक थैंक यू जरूर बोलिएगा। तो ये रेडियो ब्रिस्वानी में हमारा जो है थैंक यू, सॉरी और बहुत सारी बातें जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, वो हम यहाँ पर चर्चा करते रहते हैं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी। आइए सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक जी, आप सभी का रेडियो ब्रिस्वानी में आप सभी सुन रहे हैं चाने का सफर। तो यहाँ पर आज हम बहुत सारी बातें ऑस्ट्रेलिया की न्यूज, जो नए रूल्स लागू हुए हैं उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर मैं नए रूल्स के बारे में बताऊं तो यानी कि आज है 1 जुलाई, तो ऑस्ट्रेलिया भर में कई बड़े बदलाव जो हैं वो शुरू हो गए हैं। जैसे कि नेशनल मिनिमम वेज और जो अवार्ड वेजेस है उसमें 4.75% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर पेड पेरेंटल लीव और भी बढ़ाया गया है। साथ ही स्कैम SMS और जो फेक सेंडर IDs है उस पर और सख्त नियम जो है वो लागू हुए हैं। वहीं पर सी फूड प्रोडक्ट्स जो है उस पर कंट्री ऑफ ऑरिजिन लेबलिंग अब और क्लियर होगी। वहीं पर कुछ टैक्सेस जो हैं और कंज्यूमर रूल्स जो है उसमें भी बड़े बदलाव किए गए हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं या फिर फैमिली बजट मैनेज करते हैं तो आज से शुरू हुए ये जो नए रूल्स हैं आपके इनकम और खर्च दोनों को प्रभावित कर सकता है। तो इसीलिए बजट जो है थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो ये थी आज की खबरें। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेन।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी, जानी का सफर प्रोग्राम चल रहा है आपके दोस्त आरजे जानी आप सभी के बीच। बहुत सारी अपडेट्स आप सभी को, जानकारी जो है आप सभी को दे रही है। इसी के साथ दोस्तों, अगर हम टेक्नोलॉजी की कुछ बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में साइबर स्कैम्स जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, और एक्सपर्ट्स की सलाह सभी के लिए है कि अननोन लिंक्स अगर आपके पास आते हैं तो उस पर क्लिक जो है कभी ना करें। जी हाँ, वहीं पर अगर मैं ओटीपी या फिर बैंकिंग डिटेल्स की बात करूं तो ओटीपी या फिर बैंकिंग डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर ना करें। वहीं पर गवर्नमेंट एजेंसीज कभी भी फोन पर पेमेंट डिमांड नहीं करती है। अगर कोई भी आपको पेमेंट डिमांड करने के लिए कहता है तो उनकी बातों पर ना आए। ये अवेयरनेस जो है आप हर फैमिली के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा स्कैम्स जो है बढ़ चुके हैं। तो आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक जी आप सभी का रेडियो ब्रिस्वानी में। तो दोस्तों आज किस कार्यक्रम में बस इतना ही। आज आप सभी ने ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी खबरें जो है, न्यू अपडेट्स जो है वो जानी है और आप सभी को जानकारी प्राप्त हुई है। ऐसी अपडेट्स जानने के लिए आप सभी जुड़े रहिए रेडियो ब्रिस्वानी में अपने दोस्त आरजे चानी जैन के साथ, क्योंकि इस प्रोग्राम में आप सभी को बहुत सारी अपडेट्स जानने की जानकारी मिलती रहेगी। इसी के साथ दोस्तों मुझे दीजिए इस टाइम के लिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे आप सभी के बीच लेकर बहुत सारी अपडेट्स। ऐसे ही हंसते रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें और हर स्कैम से जरूर बचें। अब दीजिए मुझे इजाजत, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

नमस्कार मिस्टर दाक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूस ने यूक्रेन के औद्योगिक शहरों को बनाया निशाना, हमलों में 12 लोग मरे। रूस के यूक्रेन पर हुए हवाई हमलों में 12 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हैं। ये हमले तब हुए जब लोग घरों से बाहर खुले में मौजूद थे, इसलिए इन हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। हमारे हक का पानी रोका तो हाथ काट देंगे, भारत ने रोका सिंधु का पानी तो बौखलाया पाकिस्तान। भारत के सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के मामले से पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया है और इस मामले में अब नई धमकी सामने आई है। पाकिस्तानी जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसाद्दिक मलिक ने एक बयान दिया है। मलिक ने कहा है कि ये पहले ही साफ किया जा चुका है कि जो भी पाकिस्तान के हिस्से का पानी छुएगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर, 22 शहरों में रेड अलर्ट, फ्रांस, स्पेन और इटली समेत कई देशों में और बढ़ेगा तापमान। यूरोपीय देशों में पिछले एक हफ्ते से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी के चलते पूरे महाद्वीप में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है और लोगों के दैनिक जीवन पर बुरा असर पड़ा है। साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा चेतावनी भी जारी कर दी गई है कि अगले हफ्ते की शुरुआत से फ्रांस और जर्मनी जैसे देश जहां पिछले कुछ दिनों में गर्मी का सबसे ज्यादा असर देखा गया, वहां गर्मी फिर से बढ़ सकती है। आइए जुड़ते हैं अब भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। भारतीय विमानन ने रचा इतिहास, पहली बार सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम के सहारे उतरा विमान। 27 जून भारतीय नागरिक उड्डयन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में दर्ज हो गया। इस दिन पहली बार भारत में किसी वाणिज्यिक जेट विमान की लैंडिंग पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के बजाय सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम के जरिए की गई। इंडिगो के एयरबेस A320 ने भारत के स्वदेशी गगन नेविगेशन सिस्टम की मदद से ये सफल लैंडिंग की, जिसकी निगरानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भी की। भारत ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हुए आतंकी हमलों की निंदा। भारत ने अफगानिस्तान के इलाकों में पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। भारत सरकार ने इन हमलों को लापरवाही भरा और क्षेत्रीय शांति को खतरे में डालने वाला कदम बताया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का दावा है कि पाकिस्तान के इन डबल टैप हमलों में 36 आम नागरिकों की मौत हुई है और 163 घायल हुए हैं। अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हैं, बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं, बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को

0: जी हाँ दोस्तों, 1970 मूवी आंसू और मुस्कान का गाना, और इसी समय जब इनकम टैक्स ने किशोर कुमार को तंग किया
1: था, दैट्स
0: व्हाई आई मेड द सॉन्ग.
1: वी शुड प्ले दैट अ लॉट व्हेन वी आर लिटिल.
0: आई नो,
1: या
0: बीच में नाचे किशोर कुमार. Oh well, he was a comedian, wasn't he? He was just a very practical comedian. I saw him, you know that, huh? Yeah, saw him twice. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में और क्या लेकर, अभी कुछ और बहुत कुछ लेकर आएंगे हम, कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे, ठीक है, जो आप सभी के लिए शायद ठीक होगा. तो चलो कुछ पहले थोड़ा और गाना सुन लेते तो हम शुरू करेंगे.
1: I got this new song.
0: All right.
1: So here we go.

0: खत्म.
1: ये
0: ओके ओके ओके.
1: You ready for another one?
0: Well, I was thinking about playing this song, but why not, eh? Shall I play this one here? Okay, let's go for it. जब नाच के बात हो रही है इस समय, ठीक है? तो चलो इस गीत को सुनते हैं दोस्तों. रेडियो बिजवानी, आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान. और नंबर है क्या? 04300031701 या 3279-1701. You mentioned this song.

0: के अब हम गए काम से। धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से, ऐसा लगता है कि अब हम गए काम से। धड़कने लगता है,
1: धड़क में लगता है जी हाँ, गए काम से। ओके, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे दोस्तों। और क्या,
2: और क्या
1: हेल्थ टिप के बारे में बताया, थोड़ा टिप तो नहीं दिया था मैंने, थोड़ा कुछ नॉलेज दिया था।
2: नॉलेज,
1: या
2: यू वर रीडिंग आउट फैक्ट्स।
1: यस, समय समय से फैक्ट भी देना चाहिए ना।
2: ऑफ कोर्स।
1: और क्या हमें चाहिए, थोड़ा सा चलो देख लेते हैं दुनिया में क्या हो रहा है दोस्तों। ठीक है, मनोरंजन के साथ साथ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी देना जरूरी है। ओके ओके, फीफा वर्ल्ड कप 2026, द नॉकआउट स्टेज कंटिन्यूज। नॉर्वे डिफीटेड कोट डिवोरा, व्हाट इज दैट, विद अ लेट गोल फ्रॉम एर्लिंग हालैंड टू रीच द राउंड ऑफ 16। France is also playing Sweden, while Mexico faces Ecuador later today. Netherlands football, following the Netherlands elimination from the World Cup by Morocco, head coach Ronald Koeman has resigned. Wow, he's resigned, taking responsibility for the team's disappointing campaign. Vietnam regulations have come into effect, allowing authorities to fine people who deliberately spread false information on social media. The move is aimed at reducing online misinformation. देखे दोस्तों, ऑनलाइन मिसइंफॉर्मेशन बहुत हो रहा है, ठीक है, बच कर रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड न्यू असाइलम एंड इमिग्रेशन रिफॉर्म्स, इंक्लूडिंग टफर रूल्स ऑन असाइलम प्रोसेसिंग। These proposals have sparked debate amongst politicians and refugee advocacy group. World Health. World Bronchitis Day is being observed today. Raise awareness of bronchitis and chronic lung disease. Oh, wow. So and to encourage earlier diagnosis and better treatment worldwide. हमारे में कुछ एड भी आता है ना रेडियो पर, मैं हूँ डॉक्टर समथिंग। दिस ओके, चलो ये कुछ थोड़ा सा
2: समाचार। Can I give a piece of good news?
1: Yeah.
2: Okay. The U.S. Supreme Court has rejected Donald Trump's bid to overturn birthright citizenship.
1: Yes.
2: It is a major blow to the U.S. president's hardline agenda on immigration and comes after the same court earlier this year limited his ability to impose sweeping tariffs.
1: Yes.
2: How cool.
1: I wonder if you remember some time back when I said the Indian ladies were having their babies, cesarean bed, so that they would meet the deadline.
2: Oh, my goodness.
1: You remember that I told on the radio?
2: I wasn't here.
1: You were sitting right beside me here.
2: Was I?
1: When I said, yeah. You can't remember?
2: No. How bad is my memory?
1: Goodness. Oh, could I say how good is my memory?
2: You.
1: I want to know the cut-off date.
2: Yeah.
1: Till when my memory, I can remember, right? I remember saying that. It was in the news. So now, you don't have to worry. The rules have been overruled. Lot of his rules are being overruled now. No. Finally, people are coming to terms with it. Right? Okay. तो चले दोस्तों, उसका नाम आ ही जाता है, नो मैटर व्हाट, इट्स अ गेट ऑफ इट,
2: हैज टू

0: आज वेंसडे है दोस्तों, तो आज थोड़ा सा कुछ मिला जुला है। कभी वैसे तो वेंसडे को हम वेकी वेंसडे कहते हैं।
1: हाँ,
0: आज वी आर नॉट गेटिंग दैट वेकी, आर यू आर वी, सॉरी
2: आई वाज ट्राइंग वेरी हार्ड एंड यू केप कटिंग मी विद सम ऑफ योर स्टफ,
0: बट दे वर फनी सॉन्ग्स आई वाज प्लेइंग।
2: ओके,
0: या
2: बट
0: नाच मेरी जा फटाफट, और
2: इट ब्रोक द माय फ्लो,
0: इनकम टैक्स सम, दैट वाज फनी सॉन्ग।
2: बट I know it's funny, but it was like I was going in a certain direction.
0: Yeah, and I had to pull you back to the right direction.
2: Chop, chop, chop.
0: Yeah, I was pulling you to the right direction.
2: Right? Doesn't matter. Well, I'm going to go again, okay? I'm going to try again.

0: Workers Group Australian International Masters 2026, hosted by Queensland Fiji Football Association QFFA, from 1st July till 5th July 2026 at the iconic Olympic FC Stadium in Yeronga, Brisbane, with 32 teams already confirmed participating across Fiji, Australia, New Zealand, Canada and United States. Festival atmosphere for the whole family, live entertainment, kids play zone and food stalls. For more information, contact President Jitendra Prasad, Chairman Imroz Mohammed and Secretary Aman Kumar. Connecting the community. And a big thank you to our major sponsor, Total Focus Group.
1: ਭਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
2: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
1: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
3: वधेरे किफायती रिहायश दी शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
4: ओके, हम वापस आ गए हैं दोस्तों। रेडियो ब्रिस्बेन आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान। और कल हम शायद कोशिश करेंगे, जो हमारे सोका का जो प्रधान है, कुछ उनसे बातें करेंगे। होपफुली वी कैन डू इट टुमारो। तो चले कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेडियो ब्रिस्बेन आप सुन रहे हैं और कुछ प्यारे प्यारे गीत, पुराने गीत, नए गीत, ठीक है, चलो सुनते हैं इस गीत को।

0: boy.
1: Whatever.
0: Hey?
1: Okay.
0: Yeah.
1: I'll give you a break. Okay?
0: Okay.

0: Wow, what a voice, eh?
1: Yeah.
0: Yeah. और बहुत गाने इन्होंने गाए हैं. और जैसे कि एक छोटा सा एक गाना और है, और किसी से कम नहीं का गाना है ना वो,
1: हम किसी से कम नहीं.
0: तो चले दोस्तों, सुनते हैं उस गीत को.

और एक गाना है दो जो हम दोनों ने सोचा है इस गीत के बारे में और हम लेकर आ रहे हैं दोस्तों आपको, आई एम गारंटी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है।

लेडीज एंड जेंटलमैन, अब अगला गाना मैं उन दो नौजवान हसीन दिलों के लिए गा रहा हूं जो मेरी नजरों के सामने हैं। गाने के बोल हैं बोल बोल आप अच्छी तरह जानते हैं।

0: जी मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला

गुड मॉर्निंग, अ वेरी हैप्पी एंड ब्यूटीफुल मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। जागिए जागिए, क्योंकि सूरज ने अपनी सुनहरी किरणें बिखेर दी हैं। ठंडी हवाओं ने आपके दरवाजों पर दस्तक दे दी है और एक बिल्कुल ब्रांड न्यू खूबसूरत दिन आपका इंतजार कर रहा है। वैसे इस खूबसूरत दिन में आपका इंतजार तो मैं भी कर रही हूँ, जहाँ आपकी दोस्त होस्ट और आपकी मॉर्निंग आरजे सताक्षी इस वक्त आपके साथ है और आप सुन रहे हैं इट हैपेंस आपकी सताक्षी के साथ। वैसे आज का दिन ऊपर वाले का हमें दिया हुआ एक बेहद खूबसूरत गिफ्ट है। कल जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए और आज एक नई शुरुआत करिए, है ना। तो आप अपने लिए एक बढ़िया सी कॉफी प्रिपेयर करिए और मैं आपके लिए प्रिपेयर करती हूँ ये गाना। सुनिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस आपकी अपनी रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।

जय ठापस एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रीजू प्रस्वानी 1701 एम पर। और इसके पहले कि ठापंस में हम और आप आगे बढ़ें, विश कर देते हैं उन्हें जिनके लिए ये पल ये दिन बहुत ही स्पेशल और खास है। तो भाई जिनका हैप्पी बर्थडे है, आज जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। और इस बर्थडे विश के साथ ही ये विश भी करूंगी कि आपकी जिंदगी से आलस दूर रहे ताकि आप अपनी जर्नी पर फोकस कर पाए। जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास इसलिए है क्योंकि आज है उनकी वेडिंग एनिवर्सरी। सो भाई शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। और देखिए भाई एक दूसरे को रोज रोज वक्त देने का वक्त अब कम होता जा रहा है, लेकिन कम से कम एक दिन हम पूरा टाइम एक दूसरे के साथ बिताकर अपने आप को भी एहसास करा सकते हैं कि भाई सामने वाला हमारी जिंदगी का हिस्सा है ना। तो जरूर आज का दिन उनके साथ गुजारिए। सबके साथ आप गुजार पाए ना गुजार पाए, पार्टी करें ना करें, लेकिन उसको वक्त जरूर दीजिए जिसकी वजह से आज का दिन है। और जिनके लिए भी आज का दिन स्पेशल और खास है उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए आप सबके नाम प्ले करते हैं ये अगला ट्रैक। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्वानी, सताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए इट हैपेंस।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी पर, और इट हैपेंस में सताक्षी के साथ कुछ गानों के साथ कुछ बेहतरीन जज्बातों का साथ भी साथ है। वैसे सताक्षी मंत्रा आज याद आ गया है तो सोचा आपके साथ शेयर कर लें। वैसे सताक्षी मंत्रा ये कहता है कि खुद पर भरोसा रखना सीख जाइए। जी हाँ, अक्सर हम दूसरों की राय में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि कोई और आकर हमसे कहे कि यार तुम ये कर सकते हो, पर सच बताओ जब तक आप सुबह आईने में खुद को देखकर खुद से नहीं कहेंगे बॉस तुम कमाल हो और आज का दिन तुम रॉक ऑन करने वाले हो, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। याद रखिए, मुश्किलें आएंगी पर आप उन सबसे बड़े हैं। और चलिए आपके इसी जज्बात को, आपके इसी जज्बे को सलाम करते हुए आपके नाम प्ले करती हूँ ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी, सुनते रहिए इट हैपेंस सताक्षी के साथ।

वेलकम बैक रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर सताक्षी को सुन रहे हैं आप इट हैपेंस में। अच्छा, कभी कभी ना समय टाइम मशीन बन जाता है। याद है वो दौर जब सुबह सुबह घर के किसी कोने में रेडियो या ट्रांजिस्टर चालू हो जाता था और वो इलायची वाले चाय की खुशबू पूरे घर में घूम घूम कर शोर मचाती थी कि उठो अब सुबह हो गई है। कितना सुकून था ना उस सादगी में। भाई आज भले ही हम थोड़ा मशरूफ हो गए हैं पर वो सुकून कहीं गया नहीं है, वो आज भी तो हमारे अंदर ही है। तो आइए उसी सुकून को थोड़ा सा चुराते हैं और डूब जाते हैं इस अगले गीत के साथ। स्टे ट्यून्ड, आपका अपना रेडियो प्रस्वानी सताक्षी के साथ, सुनते रहिए इट हैपेंस।

तीन बैक टू बैक ट्रैक्स का हमारा सफर गानों की हैट्रिक इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ। गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक और इसके बाद होंगी ढेर सारी बातें आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं अभी गानों की हैट्रिक का ये तीसरा ट्रैक।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

वेलकम बैक वेलकम बैक। एक बार फिर से सताक्षी के साथ हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। दोस्तों, मॉर्निंग की शुरुआत एक अच्छी सोच और चाय की पहली चुस्की के साथ हो तो पूरा दिन मुस्कुराते हुए गुजर जाता है ना। वैसे भी किसी ने क्या खूब लिखा है ना कि हर सुबह एक मौका होती है कल की कमियों को आज की खूबियों में बदलने का। तो आज जब आप अपने काम के लिए घर से निकलें या घर पर ही अपने दिन की प्लानिंग कर रहे हो तो अपने चेहरे पर वो छोटी सी स्माइल जरूर रखिएगा, जो कि जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके आसपास की दुनिया को खुद ब खुद खूबसूरत कर देती है। जी हाँ, आपकी स्माइल ही तो वो है जो आपको ये बताती है कि आप कितने खूबसूरत हैं और आपको किसी मेकअप की कोई जरूरत नहीं है, है ना। तो बस इस मुस्कुराहट का ख्याल रखिए, ये आपके चेहरे को वो सूट भी करती है और आपको पॉजिटिव भी रखती है। के प्लस इनटू रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ सुनते रहिए, इट हैपेंस।

सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर। आपके इस खूबसूरत साथ को सताक्षी के साथ आप और भी सुंदर और बेहतरीन बना रहे हैं। वैसे हमारे वो दोस्त जो इस वक्त पार्क में वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं या जिम में पसीना बहा रहे हैं, आप सभी को सताक्षी का सलाम। सुबह की वैसे ये जो फ्रेश और ठंडी हवा होती है ना, ये सिर्फ हमारी बॉडी के लिए नहीं बल्कि हमारी सोच के लिए भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये हमारे थॉट्स को रिफ्रेश कर देती है। तो अपनी गाड़ी का शीशा थोड़ा सा नीचे गिराइए ताकि ताजी हवा अंदर आ सके, और अपने हेडफोन का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब वक्त है एक और बेहतरीन गाने को एंजॉय करने का। सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर।